मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए, दिलराज कौर के स्वर में।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोफेसर गुरु शरण के विचार।
1: महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के विधायक स्वरूप पर बल दिया है। सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है। हमारा जीवन गतिमान है, अर्थात वह हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अन्याय के प्रतिकार के क्षेत्र में मनुष्य ने अपने मानवीय गुणों का विकास करने का जो प्रयास किया है, उसी में से सत्याग्रह का आविष्कार हुआ है। इसे पहले पैसिव रेसिस्टेंस कहा गया था, पर इन दोनों शब्दों में बुनियादी भेद है। सत्याग्रह आत्मा का बल है, वह बलवानों का हथियार है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। सत्याग्रह का सिद्धांत प्रेम, अहिंसा और शांति पर आधारित है, इसीलिए यह विश्वव्यापी है। सत्याग्रह के आविष्कार के बाद वर्ष 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। उन्होंने स्वयं पर अधिकार पाकर व्यक्तिशः तो स्वराज पा लिया था, पर वह अपने देशवासियों को भी सामूहिक रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाकर स्वराज की कल्पना करते थे। इस पुस्तक में उन्होंने सत्याग्रह की भी चर्चा की है। यह पुस्तक संवाद शैली में लिखी गई है। जैसे एक पाठक प्रश्न करता है, गांधी जी आप सत्याग्रह या आत्मबल की बात करते हैं, उसका इतिहास में कोई प्रमाण है? आज तक दुनिया का एक भी राष्ट्र इस बल से ऊपर चढ़ा हो ऐसा देखने में नहीं आता। मारकाट के बिना बुरे लोग सीधे रहेंगे ही नहीं। गांधी जी ने उत्तर देते हुए गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति दोहराई है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब लग घट में प्राण। गांधी जी ने लिखा है कि दया बल ही आत्मबल है, यही सत्याग्रह है, और इस बल के प्रमाण पग पग पर दिखाई देते हैं। अगर यह बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल में पहुंच गई होती। वे आगे कहते हैं कि दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं, यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है, परंतु सत्य और आत्मबल पर है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है, इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन ने उनके जीवन काल में कई नवयुवकों को आकर्षित किया। उन्हीं में से उनके भानेज के पुत्र मगनलाल गांधी भी एक थे। दक्षिण अफ्रीका में 11 सितंबर 1906 की सभा में जब पैसिव रेसिस्टेंस के बजाय

0: दूसरे शब्द की खोज हो रही थी तो श्री मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह नाम प्रस्तावित किया, जो गांधी जी को जच गया और वही नाम चल पड़ा। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद भारतवर्ष में भी गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र का बड़ा ही कारगर प्रयोग किया। मिल मजदूरों की समस्या हो, चाहे बारडोली का सत्याग्रह हो, सभी में उनको सफलता प्राप्त हुई। सत्याग्रह की शक्ति अमोघ है, बस आवश्यकता है उसको शुद्ध मन से किए जाने की।
1: अभी आपने चिंतन में सुना प्रोफेसर गुरु शरण के विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर एसएस चौधरी से जानकारी।
1: किसान भाइयों, हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोएं उससे हमको अधिक से अधिक लाभ मिले, और ये तभी संभव है जब हम सही समय पे बोनी करेंगे, सही समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीक है उसका खेती में ठीक से प्रयोग करेंगे, तभी हम कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि फसल की लागत लगातार बढ़ रही है इसलिए खेती में मुनाफा कम है, तो हम आपको बताएं कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और कम लागत में अच्छा से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि समय पे तो हम बोनी करें, फिर उन्नत बीज कृषि अनुसंधान संस्थानों, पंजीकृत संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, इनसे ही लेना चाहिए और खुला बीज ना लें। फसलों को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कवकनाशी, एग्रोसांजीएन, थायराम, कैप्टान, इसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज में मिला करके यदि हम उपचारित कर लें तो करीब 50-70% रोग कम किए जा सकते हैं जो फसलों में लगते हैं। इसी तरह से कीट नियंत्रण के लिए समन्वित, यानी जिसको हम कहते हैं समन्वित कीट नियंत्रण प्रबंधन तकनीक, इसको अपनाएं। रासायनिक दवाएं हम कम डालें, इनकी जगह नीम, पाद, कीट भक्षी कीट हैं और जीवाणु, इनका ज्यादा से ज्यादा खेती में प्रयोग करें। इसी तरह से जो घनी बुवाई कहीं कहीं हो जाती है तो हमें निराई का खर्च करना पड़ता है, अच्छा ये रहता है कि हम सही बीज का प्रयोग करें, उचित पौध संख्या बनाए रखें और जो बोनी है वो कतारों में ही करें, तो इससे काफी कुछ खर्च को कम किया जा सकता है। बीज की मात्रा ज्यादा नहीं देना है, कतारों में बोने से खरपतवार के नियंत्रण में भी सुविधा रहती है, और जो बोनी करेंगे वो लाइन से यदि करेंगे तो सिंचाई आदि बहुत सी खेती की क्रियाएं हैं उनको करने में सुविधा रहती है। फिर फसल चक्र अपनाना भी बहुत जरूरी है। यदि फसलों को बदल बदल करके, हेर फेर करके हम बोते हैं तो फिर क्या है कि जो फसलों में कीट लगते हैं, कीट और रोग लगते हैं, उनकी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम फसलों को हेर फेर करके यानी फसल चक्र की मदद जरूर लें। पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, इन पद्धतियों को अपनाएं, इससे करीब 70% पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह से समन्वित पोषक तत्वों द्वारा आवश्यक पोषण दें, अर्थात फसलों को आवश्यक पोषण तत्व, रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थों को मिलाकर दें, इससे उपज और भूमि की उपजाऊ शक्ति टिकाऊ बनी रहेगी। बीज, दवा, खाद क्रय करते समय गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी का परीक्षण कराकर ही एक संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करें। श्रम और लागत कम करने के लिए सदैव उन्नत कृषि यंत्रों का ही प्रयोग करें तो काम जो है तकनीक से ही होगा। कृषि में प्राकृतिक जोखिम कम करने के लिए कारगर उपाय जैसे एकांतर कृषि पद्धति, कृषि वानिकी को अपनाएं। इस पद्धति को अपनाने से क्या होता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, पशुओं को चारा भी मिल जाता है। इसी तरह से कृषि विविधीकरण को अपनाएं तो इसके जो खेती के साथ साथ दूसरे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, तो इन सबको यदि अपनाएं तो एक तो खेती में जोखिम कम रहता है और दूसरी फसल से कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अनाज का भंडारण। जो भी हमें उत्पाद मिले उसका सही समय पर यदि भंडारण करें, उचित तकनीक से करें, तो फिर अनाज बर्बाद नहीं होगा और अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसान भाई हमारी खेती में लागत कम आएगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा।
0: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर एसएस चौधरी से जानकारी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का, कुछ रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने टीचर ट्री 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। कुल पदों की संख्या 32,388 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु जो रखी गई है वो 42 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी और पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो शुल्क है वो ₹100 रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के 2,536 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 7 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है। आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप www.ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPESSC ने असिस्टेंट टीचर के लिए PRT असिस्टेंट टीचर के 12,405 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 15 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष फॉर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अर्बन और 62 वर्ष फॉर असिस्टेंट टीचर अटैच्ड प्राइमरी रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने रूरल ग्रामीण बैंक के लिए 13,706 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 है। आवेदनकर्ता को ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 वर्ष, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 वर्ष और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, ग्वालियर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो मल्लगढ़ा चौराहे पर स्मार्ट सिटी के द्वारा नया बनाया गया है, उससे राजस्थान परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अब आप धौलपुर, जयपुर, करौली जाने के लिए न्यू ISBT से बस ले सकते हैं। एक अन्यत्र रोजगार सूचना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CAPF के SI के 1,871 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 30 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। SI फायर CISF के लिए ये उम्र सीमा अधिकतम आयु की 30 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC ने असिस्टेंट ऑफिसर के 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 5 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है। अधिकतम आयु 29 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय सेना ने आर्मी डेंटल कॉर्प्स के 37 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2026 है। न्यूनतम आयु 45 वर्ष रखी गई है।

0: अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7:00 हिंदी में समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः 25 कोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति। वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् PM किसान योजना भवतु उत वा PM सूर्यघर योजना, एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अन्तिमजनपर्यन्तं प्रापयन्ति। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्। सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसितभारतस्य निर्माणस्य संकल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजिते ऐषमः आरोग्य मंथने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः 8 वर्षपूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य 5 वर्षपूर्तिं उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मंथनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्रञ्च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणां आरम्भः अपि भविष्यति। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अद्य बेंगलुरु नगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति। शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहयिष्यति। उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः 4th संस्करणम् अद्य उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिवसीयस्य अस्य आयोजनस्य उद्घाटनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनानन्तरं एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमंत्रीं गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यद् विकास सहकारः क्षमता निर्माणं तथा जलवायु परिवर्तन संबद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सः राष्ट्रमण्डलस्य शासनाध्यक्षाणां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य

0: दृढां प्रतिबद्धतामपि प्रकटितवान्। उत्तरतटीय आन्ध्रप्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिशायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यूनदाबक्षेत्रस्य प्रभावेण ओडिशायाः विभिन्नेषु भागेषु प्रबलातिप्रबलवृष्टिः अनुवर्तते। अनेन संवेदनशीलेषु क्षेत्रेषु जलाप्लावः, मार्गेषु यातायातस्य व्यवधानं तथा आप्लावनसदृशी स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की है और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में जारी इन मोटरसाइकिल रैलियों का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है, बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत ने इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई

0: स्पर्धाओं में पदक के लिए अपना दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, प्रस्तुति होगी तोलिका शर्मा की। फिल्म संगीत का लुत्फ प्रातः 7:30 से लिया जा सकेगा। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। समाचार प्रभात प्रातः 8:00 और मॉर्निंग न्यूज़ प्रातः 8:15 पर दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।

सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रातः 8:30 से सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सोनाली और रूप कुमार राठौर। आप सुनेंगे इनके गाए कुछ गीत। प्रातः 8:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएंगी। प्रातः 9:00 सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुना जा सकेगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मशहूर कर अली खान से राग ललित में गायन, प्रातः 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण प्रातः 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

प्रातः 10:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 11:58 पर, दोपहर बाद 12:58 पर, 2:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। सायं 5:58 पर आप सुन सकेंगे इस घंटे की खास खबरें। सायं 6:00 NCERT का प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। आज चर्चा के विषय होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, किसान सम्मान निधि, साथ ही कृषि सूचना स्रोत एवं उनका उपयोग विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार से वार्ता। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार। रात्रि 10:00 आपकी फरमाइश और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के सेवा यात्रियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सरकार ने पिछले एक वर्ष में 85,000 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा आज से होगी शुरू, 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, रीवा में रेड और 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जन सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर देती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में 85,000 युवाओं को रोजगार और सेवा के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में 9 नियुक्त 62 खनिज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के साथ काम करने वाले अधिकारी प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देंगे। कार्यक्रम में बताया गया है कि प्रदेश की खनिज आय बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री ने 9 नियुक्त खनिज निरीक्षकों को सुशासन और लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि साइबर हमले, ड्रोन दुष्प्रचार और आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े खतरे लगातार नए रूप ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने में भी सक्षम है।
1: बतलाना चाहता हूं, शायद ये पहली बार ही हुआ है, आज हमारा एक भी डीपीएसयू डेफिसिट में नहीं है। एक भी डीपीएसयू हमारा डेफिसिट में नहीं है। और पिछले एक डिकेड में इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में लगभग 4 टाइम्स की वृद्धि हुई है, 4 गुना वृद्धि हुई है। और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 1.80 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
0: श्री सिंह ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश का रक्षा बजट लगभग 3 गुना बढ़ा है और स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, ड्रोन और एआई आधारित रक्षा तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए आय अर्जित करने वाले विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कल मंत्रालय में विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की और वित्त वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर, खनिज, आबकारी, परिवहन, वन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए

0: जा रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में 14वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के बेचल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 21 वर्ष से बंद लोक परिवहन बस सेवा को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस आधुनिक परिवहन व्यवस्था में ई बसों सहित विभिन्न प्रकार की बस सेवाएं चरणबद्ध रूप से नगरों और जिलों तक पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इनमें इंदौर की 145, भोपाल की 106, जबलपुर की 67, रीवा की 18, देवास के 10, कटनी के 3 और भिंड की 2 बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और नई बसों में यात्रियों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली।
2: सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपन नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं, जिसमें यात्रियों की पूरी सुविधा, यात्री आवागमन के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए जन सुविधा, बस स्टॉप, बस स्टैंड, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की जो जो जरूरत है वो सब चीज करते हुए सुगमता पूर्वक कंट्रोलिंग व्यवस्था से ये जो कल्पना की है। और अब हम वो बड़े राज्य हो गए जिनके बड़े राज्य के पास खुद की परिवहन की व्यवस्था भी है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग और विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 के मिक्स्ड 400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय धावकों राजू पुअम्मा, विशाल टीके, विद्या रामराज और मनु टीएस को बधाई दी है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रीवा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जबलपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। जबलपुर की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के इमलिया फार्म स्थित वानिकी विभाग और कृषि महाविद्यालय की ओर से तिलहनी वृक्ष परियोजना के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नमामि भारतम अभियान के तहत जिले में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी में शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर में अनंत चतुर्दशी पर आज शहर में 15 झांकियों और 7 अखाड़ों के साथ चल समारोह निकलेगा। आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति ने आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम भीमपुरी की इंदिरा खुमान सिंह डामोर ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने किराना दुकान और कृषि कार्य को आय का माध्यम बनाया। युवा आपदा मित्र योजना में आगरमालवा जिला आपदा प्रबंधन तथा होमगार्ड नागरिक सुरक्षा के तहत नामांकित 125 आपदा मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। सतना जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को सुरक्षित कराने के लिए शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, सतना नदी उजवा टोला और माधवगढ़ में विसर्जन स्थल निर्धारित किए गए हैं। मंडला में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की 5 कंपनियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाश
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। ऐसे परिवारों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें चतुर महिलाएं बाहर जाकर जीविका उपार्जित करती हों, अधिक पैसा कमाती हों और उस पैसे से किसी को बच्चों की देखरेख करने के लिए रखकर बच्चों के लिए ज्यादा ही कर पाती हों। लेकिन जो स्त्रियां अपवाद रूप हैं उनको तो अपवाद ही माना जाएगा। अपवाद तो जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन उनसे हम कोई सामान्य धारणा कैसे बना सकते हैं? सामान्यतः परिवार के पालन पोषण के लिए वित्तोपार्जन का कार्य पिता को ही करना चाहिए, और यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसके घर में सुख शांति है तो वो अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सकता है। किसी बच्चे को दुलार भरी उस सेवा से वंचित करना जो कि उसे उसकी माँ ही दे सकती है, उस बालक के प्रति गंभीर अन्याय है। बच्चों का लालन पालन करना और उनका चारित्रिक निर्माण करना स्त्री का काम है। ये काम बड़ा महत्वपूर्ण भी है। मैं स्त्रियों के लिए पुरुषों के साथ समानता का दर्जा अवश्य चाहता हूँ, लेकिन अगर माँ अपने बच्चों के प्रति अपना पवित्र कर्तव्य निभाने में चूक जाती है तो उस भूल के परिमार्जन का कोई उपाय नहीं है। निर्वंश शास्त्र की दृष्टि से हमारी जाति कुछ भी हो, पारिवारिक जीवन तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी पवित्रता सदा बनी रहनी चाहिए। उसी पर राष्ट्र के कल्याण का आधार है। परिवार का प्रभाव सदा बना रहता है, चाहे वो इष्ट सिद्ध हो या अनिष्ट। इस बात में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। और यदि पारिवारिक जीवन में प्राप्त होने वाली पवित्र सुरक्षा कायम नहीं रहती तो कोई भी राज्य टिका नहीं रह सकता। इक्के दुक्के ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी बड़े सिद्धांत या आदर्श पर चलते हुए मेरी ही तरह पारिवारिक जीवन की शीतल छाया को छोड़कर आत्मत्याग और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लें, लेकिन जनसाधारण के लिए तो पारिवारिक जीवन को कायम रखना आवश्यक है। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय भजन से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है फिल्म संगीत का। श्रोताओं, आज 25 सितंबर है, यानी बाला सुब्रमण्यम जी की पुण्यतिथि। तो आइए, आज का फिल्म संगीत हम डेडिकेट करते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को। और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म एक नई पहेली से ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: अभी आप सुन रहे थे बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा फिल्म एक दूजे के लिए से इस गीत को।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
5: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
6: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
5: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम जी की पुण्यतिथि पर उनके गाए कुछ गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत, बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ में फिल्म साजन से।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से इस गीत को। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत है राम लक्ष्मण का, गायक कलाकार हैं बाला सुब्रमण्यम। श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म हम आपके हैं कौन से। इस गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने, संगीत है राम लक्ष्मण का, गायक कलाकार हैं SP बाला सुब्रमण्यम।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।
1: इस समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसान

0: किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
6: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
7: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस

0: प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
1: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, UCI पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत US की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
0: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा UP इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली और रूप कुमार राठौर के गाए कुछ गीत।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम में कलाकार थी सोनाली राठौर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी भोपाल से होंगी।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:01 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व समूचे उत्तर भारत में मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी यानी गणेश जी के विसर्जन का दिन। आज गणेशोत्सव के 11 दिवसीय त्यौहार का समापन है। आज देश भर में ये पर्व मनाया जाएगा, जिससे 12 दिवसीय जो कार्यक्रम गणेशोत्सव है उसका समापन होगा। ये गणेशोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई थी, सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य काल में लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने की थी। उनका उद्देश्य ये था कि पूरे भारतीय जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो हम मिलकर स्वातंत्र और स्वतंत्रता संग्राम की जो बातें हैं वो पर्वों के माध्यम से कर पाएंगे, जिससे ब्रिटिश इंडिया को इन सब के बारे में कोई भनक नहीं लगेगी। आज का कार्यक्रम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है और इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करने से संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। और ये एक मान्यता है कि जब पांडव घृत पीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से व्रत किया, अनंत सूत्र धारण किया और अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। एक श्लोक है, अनंत सागर महासमुद्रे मग्नास मभ्युदय द्वर वासुदेव अनंत रूपे विनियोता जितितात्मान हनंत रूपायन मोनमस्ते। इसका अर्थ है, अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात देवता को भोग अर्पित करने से, पकवान अर्पित करने से और उस प्रसाद को सपरिवार ग्रहण करने से ये व्रत पूर्ण होता है। इस कथा का अगर शॉर्ट में सार कहूँ तो सत्ययुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ अन्य स्त्रियां भगवान की पूजा करती दिखाई दी और इस अनंत महात्म्य व्रत को जानकर उन लोगों ने भी इस अनंत सूत्र को बांधा और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त किया। अगर हम समझना चाहें तो अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, परंतु उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी से जो गणेश स्थापना की शुरुआत होती है उसे अनंत चतुर्दशी को समापन के रूप में माना जाता है। और आज के दिन भगवान गणेश की जो प्रतिमाएं विराजित हैं उनका विसर्जन अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो धार्मिक कुंड होते हैं या चलायमान प्रवाहमान नदियां होती हैं उसमें किया जाता है। हम पर्यावरण की दृष्टि से बस आपको एक सलाह देंगे कि हम अपने त्योहारों में जो मूर्तियां बनाते हैं उसमें POP का इस्तेमाल ना करें, मिट्टी की बनी मूर्तियां का इस्तेमाल करें, घास की बनी मूर्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी घास जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं और हमारी नदियों को और हमारे कुंडों को प्रदूषित नहीं करती, क्योंकि उसके पानी का उपयोग आज नहीं तो कल हम ही को करना है।

0: पिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
4: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
5: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
4: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
6: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। आपने देखा होगा कि अभी या कहीं ना कहीं अवश्य सुना या पढ़ा होगा कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में किया जा रहा है। तो आइए आपको थोड़ी सी जानकारी एशियन खेलों के बारे में देते हैं। इनकी शुरुआत जो है वो 1951 में हुई थी और नई दिल्ली यानी जो हमारी राजधानी है उसमें सबसे पहले खेलों का आयोजन किया गया था। इसमें एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये हर 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। एशिया खेलों से पहले अभी आपने लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन किया गया था। अब इन एशियन गेम्स का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है एशियाई महाद्वीप के देशों के लिए बहु क्रीड़ा प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराना। इसका मुख्यालय कुवैत में है, कुवैत सिटी कुवैत में है और इसकी जो वेबसाइट है वो एशियन ओलंपिक काउंसिल के नाम से इसकी वेबसाइट है। अब ऐसा क्यों है कि हम एशिया महाद्वीप में खेलों का आयोजन अकेले स्तर पर कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है ताकि जो हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है उसमें हम अपनी प्रतिस्पर्धा को, अपनी तैयारी को ठीक तरीके से माप सकें और अपनी प्रतिस्पर्धा में और बेहतर कर सकें। अगर हम अपने देश के ही लोगों के साथ कॉम्पीट करते रहेंगे तो हमें अपनी जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं उनके बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए इन एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ऐसे ही यूरोप में यूरोपियन गेम्स होते हैं, अमेरिका में अमेरिकन गेम्स होते हैं, जितने महाद्वीप हैं वो सभी 4-4 वर्ष के अंतराल में अपने गेम्स के लिए आयोजन करते हैं। अब इसका जो एशियन गेम्स का जो लोगो है वो उगता सूर्य है। उगते सूर्य के समान खेलों से सभी देशों में समृद्धि आए ऐसा इनका मानना है। इस बार ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो जापान में आयोजित की जा रही हैं और हमें मिली जानकारी के अनुसार भारत ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कल भारत ने 2 प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनमें पहली बार मेडल जीता है, वो 2 प्रतियोगिताएं हैं। पहली प्रतियोगिता है रोइंग में, जिसमें सतनाम और सलमान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ऐसी ही एक और प्रतियोगिता है, शूटिंग से जुड़ी हुई प्रतियोगिता है, शॉटगन शूटिंग मिक्स्ड टीम इवेंट, इसमें भी हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है।

और हम आपको और जानकारी दें इसके बारे में, तो अभी तक जो वेबसाइट से जानकारी मिल रही है, आइची नागोआ ये जापान की एक सिटी है जहाँ पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और इनकी वेबसाइट के अनुसार भारत ने अभी तक 2 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर टोटल 19 पदक अपने नाम किए हैं। इस तरह से भारत इस पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। हमने अभी तक क्रिकेट में महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही हमने शूटिंग के 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है, और ये उपलब्धि हमें, आपको जानकर बेहद खुशी होगी, अभी से ठीक 15 मिनट पहले प्राप्त हुई है, जब सुरुचि सिंह और कमलजीत ने की जो युगल जोड़ी ने गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में अपने नाम किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाले दिनों में खेलों के लिए बधाई कि भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आप सभी के साथ हैं।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर सन 1916 को हुआ था। आप भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे और सनातन विचारधारा के योगानुकूल रूप में आप प्रस्तुत किए जाते हैं। देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा आपने दी थी। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी आपकी गहरी अभिरुचि है। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। आपकी जन्म जयंती के दिन अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय दिवस के कार्यक्रम को नई दिल्ली में शुभारंभ भी करेंगे। श्रोताओं, आज के ही दिन सतीश धवन जी की भी जयंती है। अब आप सोच रहे होंगे सतीश धवन जी, हम भारतीय हैं और हमने बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सतीश धवन जी का नाम सुना होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान तभी सार्थक है जब उनका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, ये आपका ध्येय वाक्य था। सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से भौतिकी गणित की पढ़ाई की और आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले भारतीय हैं। आपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद में भारतीय विज्ञान व अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी और भारत में फ्लूइड डायनामिक्स का जनक आपको कहा जाता है। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़े रहे। एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एयरो साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंस स्किन, फ्रिक्शन, हाई स्पीड एयरोडायनामिक्स में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। या कुछ कम शब्दों में कहूँ तो आप भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही आज रखमाबाई राउत की भी जयंती है। आप भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थीं। आप एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में केंद्र भी थीं जिसका परिणाम स्वरूप एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 नामक कानून बनाना पड़ा था। आपने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई MBBS जो किया है वो विदेश में रहकर किया। 1995 में माफ़ कीजिए 1895 में आप भारत लौटी और सूरत में एक महिला अस्पताल में काम करने लगी और भारत की पहली महिला चिकित्सक होने का गौरव आपको प्राप्त है।

श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूरकर अली खान से राग ललित में गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे मशहूरकर अली खान से राग ललित में गायन। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जिले की चिट्ठी, आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों सेवा, जनभागीदारी, महिला स्वावलंबन, रोजगार और न्यायिक जागरूकता से जुड़ी कई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। स्थानीय संसाधनों को आजीविका का आधार बनाने से लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी देने और लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान तक विभिन्न क्षेत्रों में पहल की गई है। सीधी जिले की 21 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को स्थानीय महुआ से मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करने की आधुनिक तकनीक सीखने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त पोषित और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइवलीहुड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सहयोग से सीधी और मझौली विकासखंड की महिला समूह सदस्यों को शैक्षणिक भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए जगदलपुर बस्तर रवाना किया गया। बस्तर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में महिलाएं महुआ आधारित उन्नत उत्पादों के निर्माण की तकनीक सीखेंगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय महुआ को केवल पारंपरिक वन उपज तक सीमित न रखते हुए उसे बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों में बदलना और महिला समूहों की आय के अवसर बढ़ाना है। दोहनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षण वाहन को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत काशी से वडनगर तक निकाली जा रही सेवा ज्योति कलश यात्रा का सीधी जिले में स्वागत किया गया। जिले की सीमा पर पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक विश्वामित्र पाठक ने यात्रा में शामिल युवाओं और सहयोगियों का स्वागत किया। यात्रा के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया गया। जिले के रामपुर नाकिन में आयोजित युवा संगम रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेले में करीब 9 निजी कंपनियों ने सहभागिता की। रोजगार के लिए 248 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 182 आवेदकों का विभिन्न कंपनियों द्वारा प्राथमिक चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को कुल 15 लाख रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया। जिला जेल सीधी में आयोजित विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता, अपील और जमानत की प्रक्रिया सहित विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर ने बंदियों को नालसा की योजनाओं की जानकारी दी। सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में सीधी जिले के प्रमुख स्थलों में दीप प्रज्वलित किए गए। पूजा पार्क में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक रीति पाठक, कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी सहित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने दीप जलाए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय सुशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रीति पाठक ने विद्यार्थियों से वरिष्ठों के सम्मान, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लौवा स्थित रानी कुमारी मंदिर परिसर में विधायक विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य में 5,100 दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम को सेवा और जन भागीदारी से जोड़ने का संदेश दिया गया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिला चिकित्सालय सीधी के ब्लड बैंक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। सीधी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से 2,224 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 6,70,93,985 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। विद्युत अधिनियम से जुड़े मामलों, जलकर आपराधिक राजीनामा योग के प्रकरणों, वैवाहिक और सिविल मामलों का भी निराकरण किया गया। लोक अदालत में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी आपसी सहमति से समाधान हुआ। ऐसे मामलों के समाधान से पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया में समय और खर्च बचाने का अवसर मिलता है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नेवुहा वितरण केंद्र के पद पर कार्यरत सुंदरलाल बड़कड़े के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान की गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर उन्हें बार बार स्मरण पत्र जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद वांछित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी केंद्र, फिजियोथेरेपी केंद्र, एक्सरे केंद्र और इमेजिंग केंद्रों का संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीयन और अनुज्ञापन कराना अनिवार्य है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख था सचिंद्र मिश्र का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन EIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर महाराष्ट्र से, जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानुबी और बादशाह मुलाणी। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। मोगा पंजाब से जगदीश मठाड़ू, वीरपाल मठाड़ू। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। साथ ही साथ इस गीत को ही सुनना चाहते हैं आप हैं सनावत से मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, दुबिहा निबादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म पटियाला हाउस से ये गीत। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, गायक हैं महालक्ष्मी अय्यर और हर्षदीप कौर।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं येलांटू कोटा गुडेम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से, राजेश खन्ना, चिन्नापस्सी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज, भानु राज और अमित खन्ना, वरवट वकाल बुलढाणा से, नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप कॉलोनी, ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खडसे और विनोद खडसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, छन्नूलाल शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता शिवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार वोडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, पटेल नगर मालौट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप और आरजू जाजौरिया। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म अजनबी का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, गायक है अदनान सामी और सुनिधि चौहान।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
4: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
5: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
4: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
5: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
4: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

अभी आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा की आवाज़ को, प्रीतम का संगीत, समीर का लिखा, फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी अजीत नगर मलोट पंजाब से, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते थे गाडगी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निबादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राज

वन राजे जाधव, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, प्रयागराज से रश्मि झरना, भरत कुमार, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम का अगले संदेश हमारे पास आया है धनौरा विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, जिला नांदेड़, येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद शाहिद अली, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे, मानसी मालोदे, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू और रोनिका यादव, सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनल वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आतिफ असलम को, फिल्म बजरंगी भाईजान में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे दुल्हन हम ले जाएंगे से इस गीत को। इस गीत को लिखा था सुधाकर शर्मा ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का, गायक कलाकार थे सोनू निगम और अलका याग्निक। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेत कुमार, बुलढाणा से ही वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष यादव, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और सिया जाधव, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी का फरमाइश व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत साजिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष टोगी, बब्बू डब्बू, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बश्क, राबिया बश्क, रहीम मुन्ना, दानिक आसिफ शेख, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके, रोहिदा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, कोरिया से डोनट पावो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से अशोक जाटव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है अनु मलिक का, गायक हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुछ हो ना कुछ ना कहो से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, गायक हैं शंकर महादेवन और सुजाता भट्टाचार्य। इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के सेवा यात्रियों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है। सेवा के पहले चरण में प्रदेश में 1500 बसें चलेंगी। योजना के तहत 2031 तक लगभग 15,000 बसों के संचालन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के बीएचएल दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, निवेश और औद्योगिक क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इस पहल ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रदेश में आज तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा के लिए रेड अलर्ट और जबलपुर, सतना, पन्ना, बालाघाट सहित 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम अपने नए श्रोताओं से कहेंगे कि वो अब कॉल कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। और जो हमारे पुराने श्रोता हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि कृपया थोड़ा इंतज़ार करें, हफ्ते भर का जिनका कॉल लगा है अभी हफ्ते भर के अंदर तो वो इंतज़ार करें और जैसे ही हफ्ता हो जाए उसके बाद में ट्राई करें ताकि नए जो हमारे श्रोता हैं उनको मौका मिल सके। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर कौन है।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
2: सर मोहम्मद सलमान बोल रहा हूं मैं सर, शहडोल से।
1: शहडोल से सलमान खान बोल रहे हैं?
2: जी सर, जी सर।
1: तो सलमान खान साहब, जैसा कि आपने कॉल किया है कार्यक्रम फोन करेगी सुने में, तो आप ये बताइए कि कौन सा गाना आपने सोच कर रखा है कि आज आप वो गाना सुनेंगे?
2: सर मेरे को गाना सुनना है सर, फिल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश।
1: मेरा गांव मेरा देश, तो इस फिल्म का कौन सा गाना?
2: इस फिल्म का सर क्या कहते, कुछ कहता है ये
1: सावन,
2: सावन
1: लता मंगेशकर
2: सर ये गाना।
1: हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। तो हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले श्रोता कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, कार्यक्रम फोन करें कि सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं गायत्री वरकड़े बोल रही हूँ सर, माल पिपरिया से।
0: माल पिपरिया से गायत्री जी, क्या हाल चाल है?
1: डिंडोरी पड़ती है।

0: अच्छा डिंडोरी। हाँ तो ये बताइए क्या हाल चाल है।
1: जी सर, अभी तो पानी गिर रही है,
0: अच्छा पानी गिर रही है या गिर रहा है।
1: गिर रही है अभी पानी। कल परसों तो धूप रही, आज पानी सुबह से लगी है।
0: अच्छा पानी सुबह से लगी हुई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम यह है कि मौसम जो बदल रहा है, कहीं पानी गिर रहा है कहीं धूप हो रही है। एक कहावत है, यह है प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया।
1: छाया, हाँ जी सर,
0: तो हम ये कह सकते हैं कहीं धूप कहीं बरसात, है ना, थोड़ा सा चेंज कर
1: जी
0: लें इसमें। अच्छा ये बताइए कि आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, फोन करें कि सुनने में, तो आप ऐसा कौन
1: सर,
0: सा गाना
1: मैं वो
0: है
1: वाला सुनवा देना सर,
0: बताओ,
1: छुपा रुस्तम,
0: छुपा रुस्तम फिल्म का कौन सा गाना,
1: उसमें कोई सी भी फिल्म सुनवा देना सर, सब अच्छे हैं जी।
0: ऐसा। तो छुपा रुस्तम का देखिए, इसमें प्यार में दिल तो, और ये राजा ये क्या करते हो, और तू ही है मेरे दिल में, और तू निकला छुपा रुस्तम। अब इसमें से बताओ कौन सा गाना हम आपको सुनवाएं, या धीरे से जाना,
1: वो तो आपको
0: खटियन।
1: ही दीवाना
0: देखिए
1: सर,
0: दो हैं छुपा रुस्तम, एक 2000 में आई थी, सन 2000 में, और एक बहुत आई थी तकरीबन, मेरा ख्याल है कि ये किशोर कुमार की आवाज़ इस फिल्म में है, 1973 के आसपास की फिल्म है।
1: देना टाइटल
0: हाँ तो छुपा रुस्तम में नई फिल्म का गाना सुनेंगी या पुरानी फिल्म का।
1: नया वाला सर, टाइटल
0: नया वाला,
1: एक है तो यही वाला सुनवा देना है, बंगला गाड़ी वाला।
0: बंगला गाड़ी वाला। चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान और देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन हैं। कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, शानदार सदाबहार।
1: बिल्कुल सर, मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर मध्य प्रदेश से गोलू अहरवाल बोल रहा हूँ सर जी।
0: गोलू जी क्या हाल चाल है? अब हम भी तो पूछ लें आपसे कि आप कैसे हैं।
1: बस सर जी, हमारे हाल चाल बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया है सर जी।
0: हाँ, हाल चाल हमेशा सबके बेहतरीन रहना चाहिए, तभी तो जिंदगी का मजा है
1: जी। सर आज के टॉपिक क्या है?
0: फोन करें गीत सुनने में आपने कॉल किया है।
1: अच्छा, आज बुधवार है ना, कल गुरुवार है, तो बात आपकी गीत हमारे आता ना।
0: अरे आप एक दिन पीछे चल रहे हैं भाई, आज गुरुवार है।
1: अच्छा गुरुवार है आज?
0: हाँ।
1: क्या बात है सर, हम सोच रहे थे बुधवार है।
0: अरे तो चलो, खैर बड़े बड़े शहरों में छोटा छोटा सी गलतियां होती रहती हैं, कहते हैं ना कि होता रहता है। तो आप ये बताइए कि अब जब आपने कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया है तो हम आपको गाना भी सुनवाएंगे।
1: जी सर बिल्कुल, आज मुझे राज हिंदुस्तानी फिल्म का सुनवा दीजिए, पर देसी जान नहीं।
0: अच्छा, तो ऐसा परदेसी से कोई वो तो नहीं है कि मतलब शिकायत के जान नहीं?
1: नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, गाना वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए सुनना चाहते हैं।
0: परदेसी परदेसी जाना नहीं।

0: फोन करेंगे इस सुने में आपका स्वागत है। और हमारे अगले श्रोता कौन है, हम बात करते हैं उनसे। हेलो, फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम ठेरो कला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ।
0: नायक जी, क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है सर, आप जावेद भाई क्या है?
0: बहुत अच्छा हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ सर।
0: देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप भी बढ़िया हैं और मैं भी बढ़िया हूँ और जी, हमारे जी, सुनने वाले भी सभी बढ़िया हैं।
1: हाँ, मैं आपसे काफी दिन से बात करना चाहता था।
0: अच्छा, तो देखिए
1: आज मुलाकात हो ही गई जैसे।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना दिल से दिल की राह होती है।
1: हाँ, को राह मिल ही जाती है।
0: बिल्कुल, आपने दिल से याद किया, देखिए आज हमारी बात होगी।
1: जी जी जी जी।
0: तो नायक जी, ऐसा कौन सा गाना है कि आप जो सुनना चाहते हैं?
1: अब जावेद भाई ऐसा है
0: जी,
1: मैं यही बात हर उससे कहता हूँ कि मुझे मोहम्मद रफी और लता के अलावा किसी के गीत ही पसंद नहीं है। क्या है कि रफी साहब की आवाज में वो जादू है
0: जी,
1: कि कोई ना हुआ है ना होगा उसके मुकाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और वाकई यह है कि उनके जाने के 47 साल बाद 31 जुलाई 1980 को वो दुनिया से विदा हुए थे। और आज
1: हम सब जन्म तिथि और मृत्यु सब नोट किए हैं उनकी। हाँ, आज लगाव रहा हम उनसे।
0: तो आज देखिए 47 साल हो चुके हैं
1: जी
0: उनको गए हुए, लेकिन आज भी जो है मतलब लोग उनको याद रखे हुए हैं, उनके गाने रेडियो पर बजते हैं। तो उनकी जो खासियत है वो तो खैर किसी से छुपी नहीं है।
1: आपसे मैं जावेद भाई झूठ नहीं बोल रहा, मैं इन दोनों के अलावा किसी के अगर गाने बजते हो रेडियो में तो सुनता ही नहीं, हो बंद कर देता।
0: आपने कॉल किया है तो अब ये बता दीजिए मुझे गाना कौन सा आप सुनेंगे?
1: तो गाना आप सिंगल ही सुन लीजिएगा, एक आंखें तो क्या है धर्मेंद्र की वाली
0: आंखें, इस उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता उस मुल्क की।
1: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, जावेद भाई तो समझ गए दोस्त यार,
0: है ना? तो ये गाना जो
1: यही गीत सुनना चाहता हूँ मैं।
0: आंखें
1: ही सब कुछ है यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाना जो है बहुत ही पॉपुलर रहा है, देशभक्ति भी है, और इसके शुरू का जो है ना, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद की आंखें निगेबान है आंखें। बिल्कुल,
1: और क्या यार भाई, क्या यार, वाह रफी यार,
0: है ना? तो आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान है हम तो मगर अनजान है आगे ऐसा इस पूरा
1: याद है हम तो खैर ऐसे तो पके हैं उसमें।
0: तो हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, सुनिएगा। ये साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था और रवि का संगीत है।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाह

0: अब हम अपने अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो, फोन करेंगे, सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता मित्र तिवारी बोल रहा हूँ।
0: तिवारी जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है। और तो आपके लिए पंक्ति बुनना चाहता हूँ भैया।
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: कि मिल जाते इस विश्व में कुटुम्ब भाई सौ मित्र हजार,
0: क्या बात है,
1: पर आकाशवाणी से जावेद भाई जैसे मित्र नहीं मिलेंगे हमको लाखों बार।
0: क्या बात है, क्या बात है, जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है, फोन करेगी सुने में, तो इसके लिए कौन सा गाना आपने पसंद?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए आप हमें गीत सुनवा दीजिए, जैसा कि मौसम के हिसाब से बल्जल तेरी मेहरबानियां फिल्म का गीत।
0: अच्छा, तेरी मेहरबानियां में मौसम से कुछ संबंध है क्या?
1: कहना चाहता हूँ इसलिए गीत सुनूंगा क्योंकि जो आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, उन कार्यक्रमों में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। कोई कार्यक्रम में एक भाई से भाई का प्रेम किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से इंसान के पास इंसान नियत होना चाहिए, चाहे अधिकारी बनो, क्रय विक्रय के व्यापारी बनो, सरपंच या पटवारी बनो, पर याद रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो।
0: अच्छा चलिए, अब ये बता दीजिए, आपने इतनी अच्छी बात कही, कौन सा गाना सुनेंगे तेरी मेहरबानियां का?
1: जी जी, इसी का टाइटल सॉन्ग है
2: तेरी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और हमारे अगले श्रोता हेलो फोन करें कि सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी जी स्वागत करने के लिए आपको बहुत बहुत महोदय जी धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: हमारे भैया जावेद खान जी से हमको ऐसा लग रहा कि बात हो रही है।
0: बिल्कुल बात कर रहा हूँ।
1: आपकी आवाज में एक अलग तरह का है, जादू है कि पहचाने मिल जाती है सर जी की हमारे जावेद सर जी बोल रहे हैं।
0: क्या बात है क्या बात है, ये जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपने शुभ नाम बता दीजिए मुझे।
1: जी जी जी एक आध बार और आपसे बात हुई है सर जी, और बात करने में तो हमारे होंठों में एकदम हंसी ही हंसी छा जाती है, और खास तौर पर आपसे बात करने में।
0: अरे वाह क्या बात है, अब मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूं, गाना सुना के ही कर सकता हूं। तो आपने कौन सा गाना पसंद किया?
1: आपका प्यारा सा श्रोता भाई पंडित राम जी गर्ग खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: वाह वाह क्या बात है पंडित जी, देखिए आपकी बातों से हमें पंडित की जो

0: होते ना ज्ञान का हमें एहसास हो गया था
1: क्या? जी।
0: तो आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी, और आपका कार्यक्रम हमेशा सुनते रहते हैं, अच्छा लगता रहता है।
0: वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए, आप जब सुनते हैं कार्यक्रम तो हमें भी हौसला मिलता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाएं।
1: जी। नहीं, मैं आपके आकाशवाणी परिवार का ये जो ज्ञान जानकारी मनोरंजन करता है, तो मैं इसका दिल से हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि ये दिन रात 24 घंटे हमारे पास एकदम रहता करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं थोड़ा अपने रीवा मध्य प्रदेश के श्रोताओं से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ सर जी, थोड़ा सा ये हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच जाए और पहुँचाइएगा। वो हमारे श्रोता भाई बहन बहुत कम हमारे रीवा के फोन करते करते हैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अधिक से अधिक हमारे रीमा के भाई बहन जुड़े इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जी।
0: तो अब हमें ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जी, धरती कहे पुकार फिल्म का मैं गाना सुनना चाह रहा हूँ। ये पुरानी फिल्म है सर जी,
0: धरती कहे पुकार के।
1: जी।
0: हाँ बिल्कुल, धरती।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हमारे अगले श्रोता, हेलो, फोन करेगी सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, जय श्री महाकाल, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वाह, नाम भी बता दीजिए।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से सर।
0: अच्छा शिवा जी, क्या हाल चाल है?
1: जी सर बहुत बढ़िया है सर, और इस कार्यक्रम में आपसे पहली मर्तबा बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: अरे वाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं वो जुड़े हैं कार्यक्रम से और कार्यक्रम हमारा और भी बेहतर बने। तो विदिशा से बोल रहे हैं, बहुत करीब से बोल रहे हैं अब?
1: जी बिल्कुल सर, 50 किलोमीटर की।
0: हाँ, अगर आप वैसे भी
1: आपके ऑफिस में घूम के भी गया हूँ।
0: अरे आप विदिशा से वैसे भी अगर बिना फोन के भी बोल देते तो हम आपकी फरमाइश पूरी कर देते।
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, मूवी का नाम है जन्नत।
0: जन्नत, क्या बात है, मतलब यही कि दुनिया जन्नत। देखिए जन्नत 2 है और एक जन्नत है, दो फिल्में आई हैं।
1: जी सर, वो जन्नत 1 है ना सर।
0: हाँ,
1: वो जन्नत 3 भी है सर साहब।
0: हाँ, तो जन्नत और जन्नत
1: 1 का गाना है, जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था, हाँ तू है, हाँ तू है मेरी बातों में, के जी की आवाज में सर।
0: अच्छा, तुझे सोचता हूँ वो गाना।
1: जी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा, सुनिए ये।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते
1: जावेद सर जी बोल रहे हैं
0: जी। मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ।
1: सर आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। मैं सुरेश कुमार सैनी ग्राम पोस्ट अजना जिला महोबा से बात कर रहा हूँ सर।
0: महोबा यूपी?
1: जी सर।
0: क्या बात है, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: बस हाल चाल एकदम मस्त है, स्वस्थ है और बढ़िया मौसम भी है।
0: हाँ हाँ हाँ, मौसम अच्छा। देखिए मस्त तबीयत होती है तो हर चीज बड़ी अच्छी लगती है, तो हम यही दुआ करते हैं मालिक से कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, सब स्वस्थ रहें। तो आपने कॉल किया तो लाजमी है कि कोई सा गाना आपने सोच के रखा होगा।
1: मर गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही नहीं आए।
0: फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: जी सर मुझे फिल्म का नाम
0: मर गए हाँ दलाल फिल्म का है, उदित नारायण और अलका याग्निक वाली आवाज है इसमें।
1: जी जी सर।
0: गीत है हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गीत सुनिए अपने रेडियो सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके सर।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल संवाद में कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा संतुलन धैर्य समन्वय सकारात्मकता संवेदनशीलता और संवाद के साथ सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने में गर्व महसूस करता है। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है। सेवा के पहले चरण में प्रदेश में 1500 बसें चलेंगी। योजना के तहत वर्ष 2031 तक लगभग 15,000 बसों के संचालन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का राज्यस्तरीय कार्यक्रम भोपाल के बेचल दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत उत्पादों को अपने नामकरण या लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। और प्रदेश में आज तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा के लिए रेड अलर्ट और जबलपुर सतना पन्ना बालाघाट सहित 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी है। आज भगवान गणेश का विसर्जन होने जा रहा है। हमारे श्रोताओं ने पत्र लिखे हैं और उसमें अपनी पसंद लिखी है। आपको सुनवा रहे हैं मरते दम तक फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, हेमलता और साथियों ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव इस गीत को सुनना चाहते हैं। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर के श्रोताओं ने। यह है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और इनके परिवार के सदस्य। सिंहपुर बड़ा के श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं मरते दम तक फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है नरसिम्हा फिल्म से। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंद आप सब श्रोताओं की। करनाल से सुधीर, मीनाक्षी तिवारी, संदीप गुलानी और सुनीता शर्मा इस गीत को सुनना चाहती हैं। घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। यह है संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को पसंद किया है भाटापारा के श्रोताओं ने भी। आप हैं प्रमोद साहू, देवेंद्र साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। इसी गीत के लिए अपनी पसंद लिख भेजी है धामड़ी मानोरा के श्रोताओं ने भी। आप हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदर्श डेरे, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। श्री लक्ष्मीकांत प्यारे लाल भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इन्होंने पत्र लिखा है नागौद से। बाड़मेर राजस्थान के श्रोता है बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर नरसिम्हा फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में कोयला फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है इंदिवर ने, राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई है, पसंद आप सबकी है। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर के श्रोताओं ने भी। आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। एक और पत्र हमारे हाथ में है जो आया है राजकोट से। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए सुनते हैं कोयला फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए शान फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर ने। अनबख्शी का गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया, अस्मा, सालिया, साइमा और मुस्तबा खान, आफिया खान, राउब और शहीद भाई इस गीत को सुनना चाहते हैं। गांधीबाग अकोला के श्रोता हैं रमेश कनटकर और वैशाली कनटकर। इस गीत को पसंद किया है गौतम नगर नांदेड़ के श्रोताओं ने भी। आप हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार के सदस्य। थाना रोड बक्सर के श्रोता जीवद गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। जालौन के श्रोताओं ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। तो आइए सुनते हैं शान फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं कस्मे वादे फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने। गुलशन बाबरा के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। रंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता ये हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। संबलपुर कांकेर के श्रोता हैं फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव और तेजल यादव। एक और फरमाइशी पत्र हमारे हाथ में है। ये पत्र हमें मिला है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं का। ये हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश और इनके साथी। बदलापुर मुंबई के श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणिता और अर्जुन। आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से ये पत्र हमें मिला है वैशाली और शैलेश गवाड़कर का। इनका साथ दिया है सुमित और ध्वनि गवाड़कर ने।

0: इसी गीत के साथ पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
4: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर, डायरेक्ट टू होम, DTH।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की

0: आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
1: राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज सुनिए इसकी सातवीं कड़ी।

आदिवासी गांव है। दूर कहीं बांसुरी बज रही है।

0: सूर्या को ननिहाल आए कई दिन हो गए हैं। वो घर वापस जाना चाह रही है। इसी समय उसका मामा कहता है,
1: सूर्या, हे सूर्या बिटिया, अरे आज तू सवेरे से बिना काम के यहाँ से वहाँ घूमती फिर रही है। आज अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी नहीं गई तू। कुछ खोई खोई भी लग रही है तू आज। क्या बात है बिटिया, अपने मामा को नहीं बताएगी?
2: ननिहाल में आए बहुत दिन हो गए हैं मामा। माँ की बहुत याद आ रही है हमको। आज तो हम घर जाएंगे। तुम लाख बार रोकोगे ना, तब भी नहीं रुकेंगे। हाँ, आज हमारे मन में घर जाने की हूक सी उठी है।
1: हाँ तो जा, बात है। अरे तेरे मन की बात को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ बिटिया। अरे पगली, हम हमेशा के लिए अपनी लाडली बिटिया को थोड़ी लाए हैं, और तुझे अपनी ससुराल के लिए अपनी माँ के यहाँ से विदा होना ही है ना। अरे बिटिया, मामा मामी का घर आखिर होता तो मामा मामी का ही है ना।
2: देखो मामा, आप ऐसी वैसी बातें करेंगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। हाँ, और कभी बात नहीं करूंगी। मुझे अपने पराये वाली ये छोटी बातें कतई पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मन में तो हमेशा रहूंगी ना। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी घर में ही बीता है मामा।
1: अरे बिटिया, अरे क्या अपने मामा को इस बात भी रुला कर ही जाएगी तू? अच्छा देख सुन, आज मैं मजदूरी पर जाता हूँ। हाँ, घर में एक आध दिन के लिए खाने को हो जाए तो फिर तुझे तेरे घर पहुँचाऊंगा। हाँ, और सच बात तो ये है बिटिया कि तू हमारे घर में रहती है तो ये घर चहकता महकता रहता है, और तेरी मामी का वश चले तो एक दिन भी तुझे अपनी आंखों से दूर न करे।
2: तुम मुझे पहुँचाओगे मामा? ऐसा काहे कहा है तुमने? क्या मैं जैसी अकेली आई थी वैसे ही अकेली जाऊंगी नहीं?
1: अरे चली जाने को क्या हुआ, मेरी बेटी बड़ी बहादुर और होशियार है। पर
2: क्या मामा, मामी अकेली जाती है, माँ अकेली जाती है,

0: मैं भी तो अपने घर से अकेली ही आई थी, क्या अकेली लौट कर नहीं जा सकूंगी? क्या क्या रास्ता खराब है मामा, या कोई और बात है?
1: बिटिया, रास्ता तो खराब नहीं है, पर मैं तेरे साथ चलता तो अच्छा होता। हाँ,
0: पर क्यों?
2: भील जनजाति की किशोरी सूर्या का भोला और निष्पाप मन मामा के हृदय की झिझक का कारण ढूंढने लगा कि आखिर मामा उसको अकेली उसके घर क्यों नहीं जाने दे रहा है। उसको इस बात का भय था कि कहीं मामा के साथ लौटने पर पिता यह कह न डांटे,
3: आखिर तूने मामा को साथ लाकर एक दिन की उसकी मजूरी क्यों खोदी?
0: तुम कुछ भी सोचो मामा, ये लो, मैंने तो अपना सामान भी बांध लिया है। तुम्हारी भांजी जो एक बार तय कर लेती है उसको करके ही मानती है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ हमारे गांव के रास्ते में जंगली जानवर भी नहीं है, और मैं तो अभी घर पहुँच जाऊंगी, शाम होने में तो अभी काफी समय बचा है।
1: जानवर नहीं मिलते बिटिया, लेकिन जानवर से भी भयानक आदमी तो मिलते हैं।
0: क्या?
1: हाँ बिटिया, मेरी पंदे बस की बिटिया, तू नहीं समझेगी ये सब।
0: सब समझती हूँ, आदमी से भला काहे का खतरा, हम गांव में भी तो रोज आदमियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें तो कोई डर नहीं लगता।
1: तूने बेटी ये तो आदमी का इंसानी रूप देखा है, हैवानी रूप नहीं देखा है तूने। अरे आदमी अकेला भी और समूह रूप में भी कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है, और व्यवहार में जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। कभी चोर के रूप में उससे हमारा सामना होता है, तो कभी डाकू के रूप में, और बिटिया उसके और भी कई खतरनाक रूप होते हैं।
0: होते होंगे मामा, और चोर डाकू मेरे पास से क्या छीनेंगे, क्या कासे की कड़िया जो मैंने अपने पैरों में पहन रखी है।
1: तू अभी छोटी है बेटी, भोली है, तू सारी बातें नहीं समझ पाएगी। ये ले, तेरी मामी भी झोपड़ी से बाहर आ गई तेरी बातें सुनते सुनते।
4: जाने भी दो लड़की को, क्या होता है, अपन भील ठहरे, हमारी लड़कियां भी कोई माटी की बनी गुड़िया नहीं होती, वे जानवरों से भिड़ सकती हैं, तो आदमियों से भला क्या डरेंगी।
1: लो भाई, जब हाई कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाई दिया तो भैया हमारी क्या बेसात। ठीक है सूर्या, तू जा बिटिया, पर अब देर न कर। हाँ, नहीं तो रास्ते भी अंधेरा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ सूरज देवता के डूबते डूबते तक सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाए तू।
4: हाँ जा बेटी, ले ये थोड़े से पैसे रख ले, कस्बे की अगली हाट से अपने लिए कुछ खरीद लेना, और हाँ तेरे भाई बहनों के लिए भी इस पोटली में कुछ बांध दिया है।
0: तुम्हारी छांव में रहते हुए मैं तो अपनी माँ को ही भूल बैठी थी मामी, सचमुच तुम्हारे प्यार दुलार की कोई सीमा नहीं है, सभी बच्चों को भगवान तुम जैसी मामी दे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ चिंता ना करो, जल्दी फिर आऊंगी।
1: हाँ बेटा, ठीक से जाना।
0: हाँ मामा।
1: हाँ बेटा जा।

बूढ़े मामा ने असमंजस की हालत में सहमति सूचक सिर हिला दिया। मामी की आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते छोड़ सूर्य ने अपना पानी पीने का तूमा उठाया, अपनी खद्दर की ओढ़नी के आंचल में भुने हुए चने बांधे। उसी ओढ़नी के एक छोर में मामी द्वारा दी गई सौगात भी जतन से बांध ली तथा छोटी सी लकड़ी हाथ में संभाली और तेज कदमों से अपने घर का रास्ता लिया।

0: मामा भी कैसे हैं? मुझे आने ही नहीं देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं आज उनके साथ बैठकर मेहरी दूध और खाती, पर आजकल खेतों में निंदाई का समय है, जुवारी और मकई खराब हो रही होगी। माँ नाराज होती होगी कि लड़की तो मामा के यहाँ जाकर यहाँ का सब बिसरा बैठी। अकेले क्या क्या करती होगी बेचारी माँ। भाई बहन भी तो अभी छोटे हैं, उनका क्या सहारा। जानवरों को जंगल में चरा लाते हैं, वही बहुत है।
1: यूं मंसूबों के बंडल मन ही मन बांधती और खेलती हुई सूर्या अपने गांव के जाने पहचाने रास्ते पर तेज कदमों से चली जा रही थी। दिन ढलने लगा था, वन्य प्राणी अपने आश्रय स्थलों से बाहर निकलने लगे थे। इसी बीच सूर्या को बंदरों की सामूहिक आवाज सुनाई दी।
0: आहा, बंदर! अरे वाह, 1, 2, 3, 4। अरे ये तो झुंड के झुंड है। शायद पूरा कुटुंब का कुटुंब ही आज मुझे दर्शन देने चले आया है। आप हनुमान जी है ना? मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ।
1: सूर्या बंदरों की उछल कूद और कलाबाजियों के आनंद में खोसी गई थी। वह बंदरों की कूद पर मस्त होती, उनके मुंह लटकाने पर खिलखिलाकर हंसती और किटकिटाने पर अपने डंडे से उनको डराती। सूर्या को मालूम था कि उसको यहाँ बियाबान जंगल में बंदर लीला का आनंद लेते खड़े नहीं रहना है, सो वह बेमन से अपने रास्ते पर आगे बढ़ चली। उसके दिमाग ने चलते चलते फिर सोचना शुरू कर दिया।
0: ये बंदर तो यूं ही थे, और यदि रास्ते में बाघ आ जावे तो? अरे मैं तो झाड़ पर चढ़ जाऊंगी, नहीं तो ऊंची ऊंची जुवारी वाले इस खेत में छुप जाऊंगी, नहीं तो दूंगी एक डंडा तान कर। मैं भी भीली की बहादुर बेटी हूँ, जरा सामने तो आए वो बाघ का बच्चा।
1: मार्ग घनी वृक्ष मालाओं से घिरा हुआ था, एकदम सुनसान। रह रहकर पक्षियों की अजीबोगरीब आवाजें वातावरण की गंभीरता को बढ़ा रही थीं। मन ही मन सूर्या बाघ से मोर्चा लेने की रणनीति बना ही रही थी कि मार्ग में एक आदमी आता दिखाई दिया। उस आदमी के पेट के नीचे बिना म्यान की तलवार लटकी थी। उसको देखकर सूर्या के मन में भय का कोई भाव नहीं जागा। टंगिया, कुल्हाड़ी, तलवार, भाले तो वो पैदा होने के दिन से ही रोज देखती आ रही है। तलवार को देखकर वो शहराती लड़कियों की तरह भला क्यों भयभीत होती। खैर अब तो कोई चिंता नहीं, रास्ता चलता कोई आदमी है। उस आदमी के निकट पहुंची तो वह उससे पूछ बैठा।
2: ए, कहां जाती है?
0: अरे पास ही मेरा गांव है भगवानपुरा, वहीं जा रही हूँ।
1: बातचीत के बहाने उस आदमी ने सूर्या को सिर से पैर तक एक बार देखा, फिर पूछा।
2: तेरा नाम?
0: सूर्या।
2: नाम तो बहुत अच्छा है।
0: भीली की लड़की हो? भीलनी।
2: अच्छा, अरे क्या तुम मुझको चाहेगी? मेरे साथ रहेगी? चल, अरे चल, हम दोनों मार्ग के किनारे वाले उस पेड़ के नीचे बैठे हैं।
0: क्यों?
2: अरे क्यों ही का मतलब बताने के लिए तो वहां बैठने वास्ते तुझसे कह रहा हूं। अरे समझी।
1: इतना कहकर उस आदमी ने सूर्या की इज्जत पर आक्रमण करना चाहा।
2: अरे तू तो बहुत सुंदर है।
0: दूर हट, हाथ मत लगा तू मुझे। दूर हटो तुम मुझसे, हट जा। अच्छा, अच्छा, दूर हट मुझसे। अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई तो मदद कर, बचाओ, छोड़ दे मुझे।
1: पर उस बियाबान जंगल में उसकी पुकार सनसन बहती हवा में विलीन होकर बेकार सिद्ध हुई। मार्ग के दोनों ओर कलरव करते पक्षी उसकी कोई मदद करने की स्थिति में नहीं थे। पेड़ पौधे भी मूक दर्शक बने रहने के अलावा भला कर भी क्या सकते थे। वो आदमी निरीह सूर्या पर फिर झपटा।
0: बचाओ! मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा ये डंडा।

0: मैं भील की बेटी हूँ। दुष्ट, तूने मेरी इज्जत पर हमला किया, ले अब उसकी सजा भी भुगत। ये ले।
1: अरे बाला, भीलनी की बच्ची, तूने तो बाला।
2: भील की लड़की जंगल की निवासनी और उसका एकमात्र अंतिम सहारा डंडा पड़ते ही कुनिया नाम का वह आदमी नदी किनारे के पुराने वृक्ष की तरह फिसल पड़ा, जो तरुण पाक की तरह निरीह लड़की पर टूट पड़ा था। सूर्या कानून को तो जानती नहीं थी, वो घायल सांप को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। आओ देखा ना ताओ, वो मार्ग के किनारे पड़े पत्थर उठा उठा कर दुर्गा बन उस कामांध पर बरसाने लगी।
0: ये ले।

0: कोई मेरे शरीर को अपने नापाक हाथ लगाकर तो देखे। हर भीलनी प्रकृति की लाडली बेटी होती है। प्रकृति देखती रहे उसकी बेटी का अस्तित्व कोई लूट ले, ये कभी हो ही नहीं सकता।
1: सूर्या द्वारा लंका जीत ली गई और रावण मारा गया। सूर्या को इतनी समझ तो थी ही कि उसके हाथों एक आदमी की हत्या हो गई है। जब तक घटना की सूचना कोटवार के जरिए पुलिस तक पहुंचती, सूर्या घटनास्थल से भागती दौड़ती अपने घर पहुंची। पुलिस वाले रात में ही उसके घर आ धमके।
2: अरे दरवाजा खोलो, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, पुलिस आई है।
3: माई बाप, इतनी रात गए आप?
2: हाँ।
3: इस गरीब भील की दरवाजे पर क्यों पधारे? वहाँ चौतरे पे खाट बिछी है।
2: अरे
3: वहाँ बैठिए मालिक।
2: ये सब उठना बैठना तो फिर होता रहेगा। पहले तू ये बता, तेरी बेटी सूर्या इस समय कहाँ है? हम उसी को ढूंढने इतनी रात में तेरे घर पहुँचे हैं।
3: हुजूर, आखिर आप लोग मेरी बेटी को इतनी रात में क्यों ढूंढ रहे हैं? लड़की की जात है, आखिर मैं भी जानूं कि उसने क्या किया है।
2: अभी बताते हैं, वो गुनाह करके भागी है। कानून को उसकी तलाश है।
3: कानून को उसकी तलाश है, वो गुनाह करके भागी है?
2: बिल्कुल।
3: वो तो हुजूर सीधी साधी लड़की है।
2: अच्छा,
3: आज तक उसने किसी की यहाँ से एक अदद महुआ तक नहीं चुराया है। वो तो हमेशा अपने रास्ते आती है, अपने रास्ते जाती है मालिक। वे क्या खाक कोई गुनाह करेगी मालिक?
2: अरे कहा ना, उसने गुनाह किया है, वो भी संगीन गुनाह किया है। जल्दी बताओ, उस लड़की को तुमने कहाँ छुपा रखा है?
3: माई बाप, आखिर ये तो बताइए, मेरी गौजात बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है?
2: गौजात? तेरी गौजात सीधी सादी बेटी ने आज दिन में भगवानपुरा जाने वाले मार्ग पर नाले के किनारे एक आदमी की हत्या की है, निर्मम हत्या। मौके वारदात से जो सबूत मिले हैं और कोटवार से जो सूचनाएं मिली हैं, उसकी बुनियाद पर ही तेरी बेटी सूर्या को गिरफ्तार करने आए हैं। तुरंत उसको बाहर लाकर हमें सौंपो, देर मत करो।
3: मैंने तो सपने में भी कहीं नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा गुनाह कर डालेगी।
0: नहीं बापू,
3: तूने तो हमारे उजले मुंह पे कालिक पोत दी। अच्छा होता तू मामा के यहाँ से लौटती ही नहीं।
0: बापू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बापू।
3: लीजिए लीजिए हुजूर, ये रही आपकी गुनाहगार, ले जाइए इसे और फांसी पे लटका दीजिए।
0: मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ।
2: और सुनो, हम इसे गिरफ्तार करके थाने ले जा रहे हैं। सवेरे थाने आकर अपने बयान दर्ज करवा देना, और तेरे साले को भी खबर कर दी है, वो भी थाने में कल बयान देगा। और लड़की की चिंता मत करना, हम उसकी ठीक से सार संभाल करेंगे।

0: ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंट, सब शांत हो जाइए। हाँ तो लोक अभियोजक महोदय, कुमारी सूर्या वल थावरिया साकिन भगवानपुरा का केस प्रस्तुत करें। हाँ मुलजिमा को कटघरे में खड़ा करें।
1: मिलॉर्ड, मुलजिमा कटघरे में हाजिर है, अदालत की कार्रवाई अब शुरू की जा सकती है।
0: तुम्हारा नाम?
2: सूर्या।
0: उम्र?
2: वो तो नहीं मालूम, पर मामा ने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि मैं 15 बरस की हूं।
0: ठीक है, इतना ही काफी है। पुलिस ने भी 15 बरस की उम्र लिखवाई है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए, अदालत की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए।
1: हाँ तो सूर्या, ये बताओ कि क्या तुमने कूनिया नाम के व्यक्ति की हत्या की है?
0: हाँ सूर्या, तुम अदालत का समय बर्बाद ना करो, जो भी कहना है निडर होकर कह डालो।
2: हाँ हुजूर, मैं तो मामा के घर से अपने घर आने के वास्ते निकली थी, पेड़ पौधों और पक्षियों से बतियाती मगन मन रास्ते पर चली जा रही थी। इसी बीच वो दुष्ट आदमी रास्ते में मिला, कहने लगा कि मैं उसके साथ रहूं। वो पापी तो बुरी नजर वाला था हुजूर, जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे ऊपर झपट पड़ा। वो बलवान था और मैं ठहरी एक कमजोर ना समझ लड़की। जब मुझे उसके खराब इरादों का अंदाजा हुआ तो मैंने अपनी रक्षा के लिए अंतिम सहारे डंडे की मदद ली।
0: हाँ हाँ बोलो, डरो मत, आगे बोलो।
2: मैंने पूरी ताकत से उसके सिर पर डंडा मारा और वो जमीन पर लेट गया। मैंने देखा तब तक वो जिंदा था। मैंने डर से सोचा कि अगर वो फिर उठा और मुझे वो फिर उठाएगा तो वो मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो घायल सांप जैसा था हुजूर, मैंने आसपास के पत्थर उठाकर उस पर जोर जोर से फेंके और वो मर गया। मैं घबराई सी अपने घर पहुंची और घर वालों को कुछ भी बताए बिना कमरे में जाकर चुपचाप सो गई।
3: न्यायाधीश ने न्यायालय को थोड़ी देर के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया। फैसले का समय आया। न्यायाधीश ने एक छोटी सी पर्ची पर अपना अंतिम फैसला लिखकर पर्ची अपनी मेज पर औंधी रख दी और जूरी से उसका निर्णय पूछा।
0: केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जूरी इस केस की सभी सुनवाइयों में शामिल रही है, वह भी कृपया अपना लिखित फैसला मुझे सूचित करें।
4: ये लीजिए।
0: साइलेंट। ठीक है, जूरी का फैसला भी इस पर्ची में मेरे पास आ चुका है।
3: न्यायालय में कुछ मिनट के लिए जैसे लोग सांस लेना भूल गए। न्यायाधीश ने पहले जूरी की पर्ची देखी और फिर अपनी पर्ची हाथ में उठाई। उसके बाद संजीदा आवाज में फैसला सुना दिया।
0: कूनिया नामक व्यक्ति की हत्या के इस केस में सभी गवाहों के बयानात, उन पर हुई जिरह और घटना से जुड़ी सारी स्थितियों का परीक्षण करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कुमारी सूर्या वल थावरिया साकिन भगवानपुरा निर्दोष है। अदालत सूर्या को बाइज्जत बरी करती है।

सवाल ये है कि प्रकृति पुत्रियां निर्दोष से धोने के लिए भील किशोरी सूर्या की तरह कब तक अदालतों की जिरह का सामना करती रहेंगी? क्या पवित्र तन और मन वाली स्त्रियों के मान सम्मान को लहूलुहान करने का यह सिलसिला कभी थमेगा भी? ये सवाल हर युग में समाज के सामने रखे गए हैं और रखे जा रहे हैं, बस जवाब की प्रतीक्षा है। देखें वो कब मिलेगा। क्या सूर्या के लिए ही संत कवि तुलसीदास ने लिखा था?

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का सातवां भाग।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके बताए सेवा संतुलन धैर्य समन्वय सकारात्मकता संवेदनशीलता और संवाद के 7 सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता उनके बताए मार्गों पर चलने में गर्व महसूस करता है। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है। सेवा के पहले चरण में प्रदेश में 1500 बसें चलेंगी। योजना के तहत वर्ष 2031 तक लगभग 15,000 बसों के संचालन का लक्ष्य है। भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई। उनमें इंदौर की 145, भोपाल की 106, जबलपुर की 67, रीवा की 18, देवास की 10, कटनी की 3 और भिंड की 2 बसें शामिल हैं। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा शिविर लगाए जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। और प्रदेश में आज तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा के लिए रेड अलर्ट और जबलपुर सतना पन्ना बालाघाट सहित 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बिल्कुल सही बात है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसी ही घटनाएं कभी ना कभी हमारे जीवन में भी आ जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म और धर्म दोनों को अपने जीवन में लेकर चलते रहना चाहिए, और यही शिक्षा देते हैं हमारे त्योहार। जी हाँ, आज भाद्रपद महीने की चतुर्दशी है, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है। इस पवित्र डोरे में लगी 14 गांठों को लेकर शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व है। बहनों, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का भी समापन होता है। बहनों, हम सभी के घरों में गणपति विराजमान 10 दिनों तक रहते हैं और वो हमें हमारे बच्चों को बुद्धि, विवेक, रिद्धि और सिद्धि देकर इस दिन हमारे घरों से प्रस्थान करते हैं और गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन भक्त बप्पा का पवित्र नदी में विसर्जन करके उन्हें विदा करते हैं। बहनों, हालांकि कई लोग अलग अलग तिथियों पर भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं, शास्त्रीय नियम के अनुसार 1.5 दिन, 2.5, 5, 7 या फिर 11 दिनों तक भी लोग अपने घरों में गणेश जी को स्थापित रखते हैं और इनके बाद विसर्जन करते हैं। बहनों, इसी दिन गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद उन्हें शुद्ध पवित्र जलाशय में हम ढोल गाजे बाजे के साथ विदा करने के लिए जाते हैं। तो चलिए हम भी बप्पा से करवद्ध विनय करते हैं कि हे बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता, हमारे घर में बुद्धि रिद्धि सिद्धि यूं ही बनी रहे और ज्ञान की ज्योति हम सभी के जीवन को यूं ही प्रकाशमान करती रहे। हे लंबोदर, आप अगले बरस फिर से हमारे घरों में विराजमान हों।

मैनो अभी हम सुन रहे थे ए हरिहरन और साथियों की आवाज़ में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था आरडी वर्मन ने और फिल्म थी दर्द का रिश्ता। मैनो हम महिलाओं के पास इतनी काम की अधिकता है कि हम अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते और हम सभी पर सामाजिक रूप से एक दबाव होता है, वो होता है सुंदर दिखने का दबाव। जी हाँ, आज के आधुनिक समाज की एक बहुत

बहुत ही गंभीर और वास्तविक समस्या है ये। विज्ञापन, सोशल मीडिया और पुरानी सामाजिक सोच ने मिलकर सुंदरता का एक ऐसा पैमाना बना दिया जिसे हासिल करना लगभग असंभव है। बचपन से ही लड़कियों को उनकी बुद्धिमानी या हुनर से ज़्यादा उनके रंग रूप और शारीरिक बनावट के लिए सराहा या टोका जाता है। कई बार कारपोरेट या ग्लैमर इंडस्ट्री में भी महिलाओं की योग्यता से ज़्यादा उनके प्रेजेंटेबल दिखने पर जोर दिया जाता है। हर वक्त परफेक्ट दिखने की चाहत महिलाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कम आत्मसम्मान का कारण बन जाती है। बहनों, जीरो साइज या परफेक्ट फिगर पाने की चाह में लड़कियां ईटिंग डिसऑर्डर की शिकार हो जाती हैं। ये सुंदर दिखने का दबाव किसी एक उम्र या वर्ग की महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि किशोरियों से लेकर कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों तक हर कोई इसका सामना कर रहा है। बहनों, इस दबाव को कम करने के लिए समाज और खुद महिलाओं की सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। सुंदरता को चेहरे के रंग या शरीर के आकार से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, बुद्धिमत्ता, दयालुता और आत्मविश्वास से मापा जाना चाहिए। सकारात्मक पेरेंटिंग भी इस समस्या से निकलने में अहम भूमिका निभाती है। माता पिता अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि वे जैसी हैं वैसी ही बेहतरीन हैं। उनके लुक्स की बजाय उनकी शिक्षा और कौशल की तारीफ होनी चाहिए। बहनों, सुंदर दिखना गलत नहीं है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह गलत है। जब समाज महिलाओं को उनके रंग रूप के तराजू में तोलना बंद कर देगा, तभी महिलाएं सही मायनों में स्वतंत्र और सशक्त बन पाएंगी। बहनों, असली सौंदर्य चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि विचारों की खूबसूरती और आत्मनिर्भरता में है। व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व उसके दिखावे या रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके विचारों, स्वभाव और अच्छे व्यवहार से झलकता है। जब बहनों आपका व्यवहार मार्मिक और दयालुता से भरा होता है, तो लोग अपने आप ही आपके पास खिंचे चले आते हैं। कुछ इस तरह से।

0: इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप खुद को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देंगी तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाएंगी। जी हाँ, लगातार काम करने से मस्तिष्क थक जाता है, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। जब बहनों हम अपने लिए कुछ वक्त निकालते हैं, चाहे वह सिर्फ 15 मिनट शांति से बैठना हो या अपनी पसंद का कोई संगीत सुनना, तो अपने मस्तिष्क को आराम मिलता है। रचनात्मकता और कार्य क्षमता भी हमारी दोगुनी हो जाती है। खुद के लिए निकाला गया समय आपके विचारों को साफ करता है। जब आप तरोताज़ा होकर वापस अपने काम पर लौटते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब आप स्वयं खुश और संतुष्ट होते हैं तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। यदि आप खुद अंदर से थके और परेशान हैं तो आप अनजाने में अपनों पर गुस्सा निकाल सकते हैं। बहनों, भीड़ भाड़ से दूर अकेले में बिताया गया समय आपको खुद को समझने का मौका देता है। आप अपनी कमियों, खूबियों और अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में शांति से सोच सकती हैं। बहनों, ये समय आपको यह जानने में मदद करता है कि आप वास्तव में जीवन से क्या चाहती हैं। अब जरूरी है कि स्वयं के लिए समय कैसे निकालें। दिन की शुरुआत में या अंत में 10 से 15 मिनट केवल अपने लिए रखें, जिसमें कोई फ़ोन या काम ना हो। अपनी पुरानी हॉबी को जगाएं, जैसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना या जो भी आपकी पुरानी हॉबी है। ना कहना सीखें। हर काम और हर आमंत्रण को स्वीकार ना करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसका सदुपयोग करें। डिजिटल डिटॉक्स रहें। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें। खुद के लिए समय निकालना किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद को संवारने, स्वस्थ रखने का एक प्रमुख जरिया है। मैंने जैसे गाड़ी को लगातार चलने के लिए ईंधन और सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी मी टाइम की ज़रूरत होती ही है। इसलिए आज ही अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने नाम करना शुरू करें। और बहनों, थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकालें। और इस थोड़े से वक्त में चलिए हम आपको सुनवाते हैं कहानी। कहानी है अधूरा रास्ता और कहानीकार है वीणा निगम। तो सुनते हैं ये कहानी।
1: कितने सुहाने दिन थे वो। बहुत खुश थे हम सब, मैं, मेरा भाई पवन और मम्मी पापा। आखिर अकेली बहन थी मैं, बेहद लाडली, हाथों हाथ लेते थे मुझे सब, पलकों पर बिठा रखा था। भुलाए नहीं भूल पाती हूँ वो सब। पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, कौन सा ग्रहण लग गया था हमारी ज़िंदगी को। खुशी नाम की चीज़ तो जैसे कोसों दूर चली गई थी, चेहरे की हंसी जैसे काफूर हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी बिगड़ी कि फिर ठीक ही ना हो सकी। और एक दिन मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई। रो रो कर हम सबका बुरा हाल था। पापा अपना दुख छोड़कर हम सबको देखने में लग गए। फिर पापा का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, रिटायरमेंट भी हो गया था, पेंशन से घर खर्च किसी तरह चलने लगा। पर जल्दी ही मेरे भाई पवन की नौकरी लग गई और घर की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होने लगी। घर में छोटी होने के कारण भाई मुझे आए दिन गिफ्ट लाकर देते, पापा का भी खूब ख्याल रखते। इस बीच में अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी। पापा ने कहा घर संभालने के लिए भैया पवन की शादी कर देना चाहिए, और इत्तफाक से पवन भैया के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई। शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी भी कर दी गई। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, मेरा एमए फाइनल भी पूरा हो गया था और मैं पीएचडी की तैयारी कर रही थी। मैंने इस बीच भैया के व्यवहार में परिवर्तन देखा। पापा के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं था और मेरे प्रति उनका प्रेम बढ़ गया था। शायद ये स्वाभाविक लगने लगा था मुझे, क्योंकि अब उनकी पत्नी उनके साथ है और कल को तो उनका परिवार भी बढ़ेगा। पर पापा तो पापा थे, क्या उनकी तुलना किसी से हो सकती थी? बिल्कुल नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये तिरस्कार ठीक नहीं था। भाभी की बात तो समझ में आती है, वो दूसरे घर से आई हैं, पर भैया तो अपने हैं, अपने पापा को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर इससे मुझे सीख ज़रूर मिल गई थी। मैं अपने पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी, ताकि मैं भी नौकरी पा सकूं और अपने पापा का ध्यान रख सकूं। पवन भैया तो अपनी सारी तनख्वाह भाभी को दे देते थे और ध्यान भी नहीं देते थे कि भाभी घर ठीक से चला रही हैं या नहीं।

खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ हाथ तंग कर देती थी, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा खर्च कर देती थी। पापा की तबीयत मम्मी के बाद वैसे भी ठीक नहीं रहती थी। उन्हें समय पर खाना, फल, दूध और दवाइयों की आवश्यकता होती थी, पर ये सारी चीज़ें कभी भी उन्हें हमेशा नहीं मिली। भाई भी ऑफिस से आकर ना तो मुझे समय देते और ना ही पापा को। पापा की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। वो तो भला हो मेरी किस्मत का कि मैं पढ़ने में पहले से ही अच्छी थी, जिससे मेरे अध्यापकों को मुझसे कुछ आशाएं थीं, और पवन भैया शादी के पहले अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो मुझे दिया करते थे वो मैंने बचा कर रख रखा था। उससे मैं अपनी किताबें और पापा के लिए फल वगैरह खरीद लिया करती थी। साथ में घर में बगैर बताए कॉलेज के बाद कुछ ट्यूशन भी लेने लगी थी, जिससे मेरी पढ़ाई भी नहीं रुक रही थी और पापा का इलाज भी हो रहा था क्योंकि आय का स्रोत बढ़ गया था। बस लगता था कि मेरी नौकरी जल्दी से लग जाए ताकि मैं पापा का इलाज अच्छी तरह से करवा सकूं, क्योंकि भाई भाभी का व्यवहार दिन दिन खराब होने लगा था। वो शायद हमें बोझ समझने लगे थे। नियति की विडंबना तो देखिए, जो बहन उन्हें जान से प्यारी थी वो आज बोझ बन गई। जाने क्या घुट्टी पिलाई भाभी ने कि जन्मदाता को ही वो भूल गए। ये सोचकर आंखें नम होने लगी थीं, आंखों में आंसू भर आए थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि अपने भी एक क्षण में पराए हो जाते हैं। कितने खुश थे हम लोग तब, मम्मी के जाने के बाद ही ये सब हुआ। काश मम्मी हमें छोड़कर कभी ना गई होती, हमारे साथ होती तो शायद हमारा परिवार भी एक होता और हम सब खुश होते। जब सिर पर पड़ता है तो इंसान सब कुछ सीख जाता है, परिस्थितियाँ सब करवा लेती हैं। तभी तो फूलों में पलने वाली मैं कांटों में भी चलना सीख गई थी। सदा हंसी बिखेरने वाली मैं हंसना ही भूल गई थी। बस जुनून था कि किसी तरह नौकरी मिल जाए। एक के बाद एक कंपटीशन भी दे रही थी और कंपटीशन में ज़्यादातर अच्छे जवाब होते थे मेरे। उसके रिजल्ट का इंतज़ार था, इसके अलावा कुछ इंटरव्यू भी दिए थे। सुबह रोज़ समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी, उसमें अपने एक इंटरव्यू का रिजल्ट पाकर उत्सुकता से उसे देखने लगी, और तब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब मेरा रोल नंबर उसमें दिख गया। बार बार नंबर मिला रही थी, मेरा ही है या नहीं। कितने दिनों बाद मैं और पापा हंसे थे ठीक से याद नहीं आता। जल्दी ही कॉल लेटर आ गया और वो दिन भी आ गया जब मुझे ज्वाइन करने जाना था। पापा खुशी के साथ उदास भी थे, उन्हें लग रहा था इतने दिन मेरे बिना कैसे रहेंगे, आखिर उनका ख्याल रखने वाला कोई भी तो नहीं था। मैंने पापा से वादा किया कि मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आऊँगी और उनको भी साथ लेकर जाऊँगी, उनका इलाज भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराऊँगी। ज्वाइन दूसरे शहर में करना था और बैंक में अकाउंटेंट की नौकरी थी। सब कुछ ठीक से हो गया। मेरे टीचर मेरी परिस्थिति समझते हुए मेरी सहायता करने के लिए तत्पर थे और उन्होंने सहायता भी की। बैंक में मुझे ज्वाइन भी करा दिया गया। बस मुझे इंतज़ार था कि कब छुट्टी मिले और मैं पापा को लेने जाऊं। घर में सब खुश थे कि चलो बोझ कम हुआ, मुझे भी नौकरी पाकर जैसे अपनी मंजिल मिल गई थी, अब मैं और पापा सुख से रहेंगे, यही सोचा था मैंने। ठीक 15 दिनों के बाद मुझे केवल 4 दिनों की छुट्टी मिली थी। मैं चल दी अपने पापा को लेने के लिए। भैया भाभी के प्रति गिले त्याग कर उनके लिए कुछ उपहार भी ले लिए थे। एक नए रूप में ताना बाना बुनते हुए मैं घर पहुंची तो बाहर बहुत भीड़ लगी थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था। आगे बढ़ी तो देखा, अरे वहाँ का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सिर के ऊपर आकाश घूमता हुआ नज़र आने लगा। आँखों से अविरल अश्रुधारा निकल पड़ी थी। पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे, उनका पार्थिव शरीर जमीन में पड़ा था। होंठ जैसे बोलना ही चाहते थे कि आ गई बेटी, तेरा ही तो इंतज़ार था, अब मैं चलता हूँ, बहुत थक गया था। कुछ देर बाद घर खाली हो गया, सब चले गए। मन में तो विद्रोह भरा हुआ था कि मेरे जाने के बाद किसी ने पापा की देखभाल ही नहीं की होगी, तभी तो ऐसा हुआ। ना ही मैंने किसी से कोई बात की और ना ही मुझसे कोई बोला। घर में क्या हुआ कुछ याद नहीं, मैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई थी। जब होश आया तो घर में शोरगुल था, मिलने वाले बैठने वाले आ जा रहे थे। मैं फटाफट उठी और वापस जाने की तैयारी करने लगी। मेरा यहाँ क्या काम, जब पापा ही नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगी। कहाँ जा रही हो छोटी, अब तुम भी चली जाओगी, ऐसे में तो घर सूना हो जाएगा, भैया ने मुझसे कहा। आज मेरी सुधाई है भैया, पापा और मुझसे बातें किए हुए तो तुम्हें अरसा बीत गया, अब इन बातों का क्या मतलब, सब कुछ खत्म हो गया है हमारे बीच। दूसरों के सामने कोई तमाशा ना हो इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा।

0: उनके उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए मैं सीधे अपना बैग उठाकर बस स्टैंड की तरफ निकल गई, अपनी मंजिल की ओर, अपनी अधूरी इच्छा लिए। हाँ, मेरे पापा को ले जाने की इच्छा तो अधूरी रह गई थी ना। मुझे अपनी मंजिल तो मिली, पर पापा के बिना वो मेरा अधूरा रास्ता बनकर रह गई, अधूरा रास्ता।
1: मैंने अभी हम सुन रहे थे कहानी अधूरा रास्ता। कहानीकार थी वीणा निगम। बहनों, भारत के ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की। ये योजना ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल बनाने और उनके लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बहनों, योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करना है। बहनों, ये प्लेसमेंट लिंक कौशल कार्यक्रमों पर आधारित है, जिसमें प्रशिक्षण के बाद न्यूनतम 70% प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल, रखरखाव, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य सेवा, देखभाल आधारित अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। योजना में उद्योग भागीदारी को अनिवार्य किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षण, वितरण और प्लेसमेंट में उद्योगों की सक्रिय भूमिका शामिल रहे। ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाकर उनकी आय में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन में इस योजना का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। तो बहनों, ये तो थी संक्षिप्त सी जानकारी। बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते आपके साथ बस दो लाइनें। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। तो बहनों, अपने आत्मविश्वास को यूं ही बनाए रखिए और सुनते रहिए कार्यक्रम महिला सभा। और इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।
3: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
4: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिलाजुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
3: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
4: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिलाजुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
3: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गाँव गाँव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
4: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
3: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गणेश वंदना। सबसे पहले आप सुनेंगे प्रेम नारायण पाठक के स्वर में गणेश स्तुति, उसके बाद कलाकार होंगे देवी प्रसाद अग्रवाल और फिर चुन्नीलाल रैकवार और साथियों की आवाजों में आप सुनेंगे गणेश वंदना। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ गणेश वंदना। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए ऋचा मिश्रा के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे ऋचा मिश्रा के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान

0: बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, 14 सितंबर से गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ था और आज अनंत चतुर्दशी की तिथि है, यानी घरों में जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित थीं, सार्वजनिक स्थलों पर जो पंडाल लगे थे और गणेश प्रतिमाएं स्थापित थीं, उनके विसर्जन का आज दिन है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति और आस्था के साथ ये दिन हमने गुजारे। आज अनंत चतुर्दशी मनाते हुए आपको फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में दो गणेश स्तुति सुनवाने जा रहे हैं। पहली स्तुति फिल्म विरुद्ध से है और दूसरी फिल्म डॉन से है।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 साल पूरा होने पर कहा है कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का मकसद ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में CCTV, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। 2024 में 31 अंकों के साथ प्रदेश 23वें स्थान पर था, जो अब बढ़कर 59 अंक हो गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में भी 124% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और प्रदेश में 1,780 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। अनंत चतुर्दशी पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। जलाभिषेक और पंचामृत पूजन के बाद भस्म, चंदन, भांग और सुगंधित फूलों से बाबा का अलंकरण किया गया। परंपरा के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इधर भोपाल में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला तेज हो गया है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। शाम को विसर्जन जुलूसों के साथ घाटों पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। क्रेन और पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा। वहीं नगर निगम 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर मूर्ति संग्रहण स्टॉल लगाएगा, जहाँ लोग पूजा के बाद प्रतिमाएं जमा कर सकेंगे। बात खेल की। भारत ने एशियन गेम्स में आज 2 मिनट के अंदर 2 मेडल अपने नाम किए। सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता। इसके 2 मिनट बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को सिल्वर मिला। नागोया में चल रहे गेम्स में यह भारत का 2रा गोल्ड है, जबकि महिला क्रिकेट टीम इससे पहले पहला स्वर्ण दिला चुकी है। पुरुष और महिला कबड्डी टीमें फाइनल में पहुंच गई है। वहीं स्क्वाश और टेबल टेनिस में भी भारत के पदक पक्के हो चुके हैं। फिलहाल भारत 2 गोल्ड समेत 19 पदकों के साथ मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय रहने से आधे प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। जबलपुर समेत 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में 28 सितंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर 1 दिवसीय जिले के प्रवास पर रहेंगी। नर्मदापुरम में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर पालिका ने हर्बल पार्क के पास एक विशाल कृत्रिम कुंड तैयार किया है। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में कल वक्ताओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस और हिन्दी पखवाड़ा समारोह के तहत हिन्दी भाषा के महत्व और राष्ट्रीय सेवा योजना के समाज निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। रायसेन

जिले के बरेली में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बड़नगर से वाराणसी जा रही यात्रा के बरेली पहुंचने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और जबलपुर में वंदे भारत के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज शहर के 25 स्थानों पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7

0: मिनट होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
3: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2000

0: 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
3: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
4: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल

0: टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी मुस्कुराहट पहुंची है हम तक। हम जानते हैं कि इस वक्त आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ हैं, आपके काम तो चल रहे हैं लेकिन दिन की रफ्तार थोड़ी थमी हुई सी है क्योंकि 2:30 का वक्त हो रहा है और ऐसे समय में कुछ पल का सुकून आप संगीत के जरिए चाहते हैं, तभी तो इतने सारे खत लिखकर आप भेजते हैं हमें आपकी फरमाइश के लिए। तो चलिए, पहला जो गीत है वो हमने आनंद फिल्म से लिया है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल गुलजार के हैं, धुन सरिल चौधरी की। और इस गीत को पसंद करते हैं थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी। ये चिट्ठी आई है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, स्वीटी और बेबी प्रियांशी।

आइए योगेश का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। सलिल चौधरी का संगीत है, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम रजनीगंधा और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाणकर, श्रीमती वैशाली गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर, कुमारी ध्वनि गम्हाणकर परी, लाडला टुक टुक और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठी आई है धामड़ी मानोरा से, पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और इसी गीत को पसंद करते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबकी फरमाइश पर आइए किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत सुनते हैं। संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।
1: मेरे दीवाने पन की भी दवा।

ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और संगीत एस डी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा खान, नफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और इसी गीत को पसंद करते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे समर्पण।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत पड़ोसन फिल्म से हमने लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार आरडी बर्मन। अनुरोध आप सबका है, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से इसी गीत को पसंद करते हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, और जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहद से ये खत आया हुआ है। लिखने वाले श्रोता हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, भैया तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 साल पूरा होने पर कहा है कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का मकसद ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की ओर बढ़े। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। 2024 में 31 अंकों के साथ प्रदेश 23वें स्थान पर था, जो अब बढ़कर 59 अंक हो गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में भी 124% की बढ़ोतरी हुई है। सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लंबित मामलों को लेकर श्रम सचिव रघुनाथ राजेंद्रन ने अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अनंत चतुर्दशी पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:35, 9:45 और रात 10:20। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

जन सेवा से देश सेवा, हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुनिए रात 8 बजे, रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद शाहिद की वार्ता, एशियन गेम्स 2026 पुरुष T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम कट एंड रेजर, और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे शिराज हुसैन खां का सारंगी वादन राग मेघ। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, ओटीटी वेब्स और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कुछ गणेश वंदना सुनिए। सबसे पहले आप सुनेंगे प्रेम नारायण पाठक के स्वर में गणेश स्तुति, इसके बाद देवी प्रसाद अग्रवाल की आवाज़ में सुनिएगा गणेश वंदना, और फिर चुन्नीलाल रेखवार और साथी प्रस्तुत करेंगे गणेश स्तुति। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ भजन सुनवाने जा रहे हैं। गायिका हैं ऋचा मिश्रा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, और उसके बाद फूल और कांटे फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 चोटियों पर पहली बार चढ़ाई करने वाले और इतिहास रचने वाले पर्वतारोही दल से मुलाकात की। दल ने ये चढ़ाई मात्र 23 दिनों में पूरी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। भोपाल में जनजातीय कला से लेकर विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कई गतिविधियां जारी हैं। जनजातीय संग्रहालय में भील चित्रकार बाबू ताहेड़ के चित्रों की प्रदर्शनी 30 सितंबर तक चलेगी। भोपाल में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला तेज हो गया है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। शाम को विसर्जन जुलूसों के साथ घाटों पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। क्रेन और पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा। भारत ने एशियन गेम्स में आज 2 मिनट के अंदर 2 मेडल अपने नाम किए। सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता। इसके 2 मिनट बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को सिल्वर मिला। और प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय रहने से आधे प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। जबलपुर समेत 13 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी भोपाल के साथ, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मौसम फिल्म का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का सातवां भाग।

आदिवासी गांव है। दूर कहीं बांसुरी बज रही है।

सूर्या को ननिहाल आए कई दिन हो गए हैं। वो घर वापस जाना चाह रही है। इसी समय उसका मामा कहता है,

0: बिटिया, हे सूर्या बिटिया। अरे आज तू सवेरे से बिना काम के यहाँ से वहाँ घूमती फिर रही है, आज अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी नहीं गई तू। कुछ खोई खोई भी लग रही है तू आज। क्या बात है बिटिया, अपने मामा को नहीं बताएगी?
1: ननिहाल में आए बहुत दिन हो गए हैं मामा, माँ की बहुत याद आ रही है हमको। आज तो हम घर जाएंगे, तुम लाख बार रोकोगे ना तब भी नहीं रुकेंगे। हाँ, आज हमारे मन में घर जाने की हूक सी उठी है।
0: हाँ तो जा, बात है। अरे तेरे मन की बात को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ बिटिया। अरे पगली, हम हमेशा के लिए अपनी लाडली बिटिया को थोड़ी लाए हैं, और तुझे अपनी ससुराल के लिए अपनी माँ के यहाँ से विदा होना ही है ना। अरे बिटिया, मामा मामी का घर आखिर होता तो मामा मामी का ही है ना।
1: देखो मामा, आप ऐसी वैसी बातें करेंगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, हाँ, और कभी बात नहीं करूंगी। मुझे अपने पराये वाली ये छोटी बातें कतई पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मन में तो हमेशा रहूंगी ना। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी घर में ही बीता है मामा।
0: अरे बिटिया, अरे क्या अपने मामा को इस बात भी रुला कर ही जाएगी तू? अच्छा देख सुन, आज मैं मजदूरी पर जाता हूँ, घर में एक आध दिन के लिए खाने को हो जाए तो फिर तुझे तेरे घर पहुँचाऊंगा। हाँ, और सच बात तो ये है बिटिया कि तू हमारे घर में रहती है तो ये घर चहकता महकता रहता है, और तेरी मामी का वश चले तो एक दिन भी तुझे अपनी आंखों से दूर न करे।
1: तुम मुझे पहुँचाओगे मामा? ऐसा काहे कहा तुमने? क्या मैं जैसी अकेली आई थी वैसे ही अकेली जाऊंगी नहीं?
0: अरे चली जाने को क्या हुआ, मेरी बेटी बड़ी बहादुर और होशियार है। पर
1: ये पर क्या मामा, मामी अकेली जाती है, माँ अकेली जाती है, और मैं भी तो अपने घर से अकेली ही आई थी, क्या अकेली लौट कर नहीं जा सकूंगी? क्या क्या रास्ता खराब है मामा, या कोई और बात है?
0: बिटिया, रास्ता तो खराब नहीं है, पर मैं तेरे साथ चलता तो अच्छा होता। हाँ
1: पर क्यों?
2: भील जनजाति की किशोरी सूर्या का भोला और निष्पाप मन मामा की हृदय की झिझक का कारण ढूंढने लगा कि आखिर मामा उसको अकेली उसके घर क्यों नहीं जाने दे रहा है। उसको इस बात का भय था कि कहीं मामा के साथ लौटने पर पिता यह कह न डांटे,
3: आखिर तूने मामा को साथ लाकर एक दिन की उसकी मजूरी क्यों खोदी?
1: तुम कुछ भी सोचो मामा, ये लो मैंने तो अपना सामान भी बांध लिया है। तुम्हारी भांजी जो एक बार तय कर लेती है उसको करके ही मानती है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ हमारे गांव के रास्ते में जंगली जानवर भी नहीं है, और मैं तो अभी घर पहुँच जाऊंगी, शाम होने में तो अभी काफी समय बचा है।
0: जानवर नहीं मिलते बिटिया, लेकिन जानवर से भी भयानक आदमी तो मिलते हैं।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया, मेरी 15 वर्ष की बिटिया तू नहीं समझेगी ये सब।
1: सब समझती हूँ, आदमी से भला काहे का खतरा, हम गांव में भी तो रोज आदमियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें तो कोई डर नहीं लगता।
0: तूने बेटी ये तो आदमी का इंसानी रूप देखा है, हैवानी रूप नहीं देखा है तूने। अरे आदमी अकेला भी और समूह रूप में भी कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है, और व्यवहार में जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। कभी चोर के रूप में उससे हमारा सामना होता है, तो कभी डाकू के रूप में, और बिटिया उसके और भी कई खतरनाक रूप होते हैं।
1: होते होंगे मामा, और चोर डाकू मेरे पास से क्या छीनेंगे, क्या कासे की कड़ियां जो मैंने अपने पैरों में पहन रखी है।
0: तू अभी छोटी है बेटी, भोली है, तू सारी बातें नहीं समझ पाएगी। ये ले, तेरी मामी भी झोंपड़ी से बाहर आ गई तेरी बातें सुनते सुनते।
4: जाने भी दो लड़की को, क्या होता है, अपन भील ठहरे, हमारी लड़कियां भी कोई माटी की बनी गुड़िया नहीं होती, वे जानवरों से भिड़ सकती हैं, तो आदमियों से भला क्या डरेंगी।
0: लो भाई, जब हाई कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाई दिया तो भैया हमारी क्या बेसात। ठीक है सूर्या, तू जा बिटिया, पर अब देर न कर, नहीं तो रास्ते भी अंधेरा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ सूरज देवता के डूबते डूबते तक सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाए तू।
4: हाँ जा बेटी, ले ये थोड़े से पैसे रख ले, कस्बे की अगली घाट से अपने लिए कुछ खरीद लेना, और हाँ तेरे भाई बहनों के लिए भी इस पोटली में कुछ बांध दिया है।
1: तुम्हारी छाव में रहते हुए मैं तो अपनी माँ को ही भूल बैठी थी मामी। सचमुच तुम्हारे प्यार दुलार की कोई सीमा नहीं है। सभी बच्चों को भगवान तुम जैसी मामी दे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ चिंता ना करो जल्दी फिर आऊंगी।
0: हाँ बेटा ठीक से जाना।
1: हाँ मामा।
0: हाँ बेटा जा।
2: बूढ़े मामा ने असमंजस की हालत में सहमति सूचक सिर हिला दिया। मामी की आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते छोड़ सूर्य ने अपना पानी पीने का तूमा उठाया, अपनी खद्दर की ओढ़नी के आंचल में भुने हुए चने बांधे, उसी ओढ़नी के एक छोर में मामी द्वारा दी गई सौगात भी जतन से बांध ली तथा छोटी सी लकड़ी हाथ में संभाली और तेज कदमों से अपने घर का रास्ता लिया।

0: मामा भी कैसे? मुझे आने ही नहीं देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं आज उनके साथ बैठकर मेहरी दूध और खाती, पर आजकल खेतों में निंदाई का समय है, जुवारी और मकई खराब हो रही होगी। माँ नाराज होती होगी कि लड़की तो मामा के यहाँ जाकर यहाँ का सब बिसरा बैठी। अकेली क्या क्या करती होगी बेचारी माँ। भाई बहन भी तो अभी छोटे हैं, उनका क्या सहारा? जानवरों को जंगल में चरा लाते हैं, वही बहुत है।
1: यूं मंसूबों के बंडल मन ही मन बांधती और खेलती हुई सूर्या अपने गांव के जाने पहचाने रास्ते पर तेज कदमों से चली जा रही थी। दिन ढलने लगा था, वन्य प्राणी अपने आश्रय स्थलों से बाहर निकलने लगे थे। इसी बीच सूर्या को बंदरों की सामूहिक आवाज सुनाई दी।
0: आहा, बंदर! अरे वाह, एक दो तीन चार। अरे ये तो झुंड के झुंड है। शायद पूरा कुटुंब का कुटुंबी आज मुझे दर्शन देने चले आया है। आप हनुमान जी है ना? मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ।
1: सूर्या बंदरों की उछल कूद और कलाबाजियों के आनंद में खोसी गई थी। वह बंदरों की कूद पर मस्त होती, उनके मुंह लटकाने पर खिलखिलाकर हंसती और किटकिटाने पर अपने डंडे से उनको डराती। सूर्या को मालूम था कि उसको यहाँ बियाबान जंगल में बंदर लीला का आनंद लेते खड़े नहीं रहना है, सो वह बेमन से अपने रास्ते पर आगे बढ़ चली। उसके दिमाग ने चलते चलते फिर सोचना शुरू कर दिया।
0: ये बंदर तो यूं ही थे, और यदि रास्ते में बाघ आ जावे तो? अरे मैं तो झाड़ पर चढ़ जाऊंगी, नहीं तो ऊंची ऊंची जुवारी वाले इस खेत में छुप जाऊंगी, नहीं तो दूंगी एक डंडा तान कर। मैं भी भीली की बहादुर बेटी हूँ, जरा सामने तो आए वो बाघ का बच्चा।
1: मार्ग घनी वृक्ष मालाओं से घिरा हुआ था, एकदम सुनसान। रह रहकर पक्षियों की अजीबोगरीब आवाजें वातावरण की गंभीरता को बढ़ा रही थीं।

घबराई सी अपने घर पहुंची और घर वालों को कुछ भी बताए बिना कमरे में जाकर चुपचाप सो गई।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 दो मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन है। देश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए 5 एजेंडा तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का युवाओं के मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ सौम्या शर्मा, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारी लाइफ से जुड़े कुछ जरूरी विषयों पर। और आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान, जहां हम देखेंगे सोने जैसा चमकता ऐतिहासिक जैसलमेर का किला। साथियों, इसके साथ ही आज होगा हिंदी पखवाड़े पर विशेष कार्यक्रम हिंदी है हम। इसके साथ ही हम आपसे बात करेंगे कि अगर लाइफ में कभी असफलता यानी फेलियर का सामना करना पड़े तो उससे सीखकर दोबारा शुरुआत कैसे करें। साथियों, बातों और विचारों का यह सफर आपकी पसंद के खूबसूरत गानों से सजाया गया है, तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम घूमने फिरने या इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। रजवाड़ों की धरती, जहां मिट्टी का कण कण शूरवीरों की कहानियां बयां करती हैं। कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जादुई जगह पर जिसे द गोल्डन सिटी यानी सुनहरा शहर कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे जैसलमेर के किले की। दोस्तों, जैसलमेर के इस ऐतिहासिक किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूरा किला पीले बलुआ पत्थरों से बना है। जब सुबह और शाम को सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह सोने की तरह चमक उठता है। साथियों, इस किले की सबसे अनोखी और दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया के गिने चुने लिविंग फोर्ट्स यानी जीवंत किलों में से एक है। इसका मतलब है कि आज भी इस किले के भीतर शहर की लगभग एक चौथाई आबादी निवास करती है। यहाँ के तंग रास्ते, पुराने घर, दुकानें और रंग बिरंगे बाजार आपको ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप समय के पहिए को पीछे घुमाकर मध्यकाल में पहुंच गए हों। बिना चूने या सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को आपस में फंसाकर बनाई गई यह वास्तुकला आज के इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देती है। साथियों, किले के भीतर का राजमहल, जिसे मेहरावल पैलेस कहते हैं, अपनी नक्काशी और झरोखों के लिए मशहूर है। और इसके साथ ही यहाँ बने 12वीं से 15वीं शताब्दी के जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और साथियों, इसके इतिहास पर नजर डालें तो इस भव्य किले का निर्माण साल 1156 में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने करवाया था। त्रिकुटा पहाड़ी पर बना ये किला लगभग 850 साल पुराना है। इसने इतिहास के कई उतार चढ़ाव और युद्ध देखे हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाते हैं तो कड़ाके की धूप ढलने के बाद किले के बुर्ज से सनसेट यानी डूबते सूरज का नजारा देखना मत भूलिएगा। जब ढलता हुआ सूरज पूरे जैसलमेर शहर को सुनहरे रंग से सराबोर कर देता है, तो वह पल हमेशा हमेशा के लिए आपकी यादों में कैद हो जाता है। तो मेरे युवा साथियों, अगर आपको इतिहास से प्यार है, फोटोग्राफी का शौक है या फिर रेगिस्तान के बीच एक सुनहरे अतीत को महसूस करना चाहते हैं, तो जैसलमेर का किला आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। साथियों, हमने आपको जानकारी दी ऐतिहासिक स्थल जैसलमेर के किले के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द पर जिससे हम सब कभी ना कभी डरते हैं, भागते हैं, और वो शब्द है असफलता। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एग्जाम के लिए दिन रात एक कर दिया हो, किसी इंटरव्यू के लिए पूरी जान लगा दी हो, या किसी स्पोर्ट्स मैच के लिए महीनों पसीना बहाया हो और नतीजा वो नहीं मिला जो आप चाहते थे? उस वक्त दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, है ना? लेकिन मेरे युवा साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। असफलता हमारे जीवन का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक कॉमा है। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों नाकाम कोशिशें की, या फिर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इन सब की जिंदगी में एक बात कॉमन थी, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो सवाल ये है कि जब लाइफ में फेलियर आए तो क्या करें? तो सबसे पहला कदम, उदास होकर कमरे में बंद होने के बजाय खुद से एक ईमानदार सवाल पूछे, मुझसे कहाँ कमी रह गई? क्या मेरी तैयारी में कमी थी? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था? जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो असफलता एक दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। वो आपको बताती है कि अगली बार आपको कौन सी गलती नहीं दोहरानी है। और दूसरा कदम है दोबारा शुरुआत करना। याद रखिए, जब आप गिरकर दोबारा खड़े होते हैं तो आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने अनुभव के साथ शुरुआत कर रहे होते हैं।
अब आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हैं। मेरे दोस्त, गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरे रहना शर्म की बात है। अगर आज रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हों। अपनी एनर्जी को समेटिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, एक बार फिर सही और इस बार हम बेहतर करेंगे। चलते चलते किसी शायर की एक खूबसूरत लाइनें आपके लिए जोड़ रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उठिए, अपनी कमियों से सीखिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों के पीछे लग जाइए। साथियों, भी हमने आपसे बात की कि असफलता से कैसे सीखें और दोबारा शुरुआत कैसे करें, और अब आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की। गीतकार थे AM तुराज और संगीत से सजाया था संजय लीला भंसाली ने। सरल है यह भारत की भाषा, यह केवल भाषा नहीं जन जन की अभिलाषा। शब्द शब्द में मिश्री जैसी घोले यह मिठास, यह है हमारी हिंदी, हमारी पहचान, हमारा विश्वास। महान कवि और साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी की इन बेहद खूबसूरत पंक्तियों के साथ आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम हिंदी है हम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल सितंबर का महीना आते ही हमारे देश में एक अलग ही साहित्यिक और संस्कृति बहार और सांस्कृतिक बहार आ जाती है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों से लेकर हर जगह कार्यक्रमों की धूम मच जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी पखवाड़े की। हमारे बहुत से युवा श्रोता सोच रहे होंगे कि आखिर इस पखवाड़े शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक महीने में दो भाग होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिनों के समय को यानी 15 दिनों की अवधि को ही पखवाड़ा कहा जाता है। चूंकि हम हिंदी के सम्मान में ये उत्सव पूरे 15 दिनों तक मनाते हैं, इसलिए इसे हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास और महत्व की। आखिर हम इसे सितंबर के महीने में ही क्यों मनाते हैं? दरअसल 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद वर्ष 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा और धीरे धीरे इसे पूरे 15 दिनों के एक उत्सव यानी हिंदी पखवाड़े का रूप दे दिया गया। इसका मकसद सिर्फ एक भाषा का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी ने पूरे देश को एक मजबूत धागे में पिरोकर रखा है। इसी जुड़ाव, इसी मिठास और अपनी मिट्टी के गौरव को बयां करता है फिल्म पूरब और पश्चिम का ये सदाबहार गीत।

काली गोरी का भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। वाह, इस गीत की एक एक पंक्ति सीधे दिल में उतर जाती है। और यही तो हमारी भाषा की भी सबसे बड़ी ताकत है, सबको अपना बना लेना, हर संस्कृति को खुद में समेट लेना। प्यारे श्रोताओं, हिंदी पखवाड़ा मनाने का असली महत्व तब है जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी को वो सम्मान दें और स्थान दें जिसका वह हकदार है। हमें अंग्रेजी या दुनिया की कोई भी अन्य भाषा सीखने से परहेज नहीं होना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले उसे समेटना चाहिए, लेकिन अपनी राजभाषा को बोलते या लिखते समय हमारे मन में किसी भी तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी का शासकीय और व्यवहारिक उपयोग कम होने लगा था। हिंदी पखवाड़ा मनाने के पीछे इसके कई मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे आधिकारिक उपयोग में वृद्धि, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजमर्रा का काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो लोग हिंदी लिखने या बोलने में संकोच करते हैं उन्हें एक ऐसा मंच देना जहां वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रख सके, और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और राजभाषा के गौरवमय इतिहास से परिचित कराना। साथियों, 15 दिनों के दौरान देश भर के संस्थानों में उत्सव जैसा माहौल होता है। इस अवधि में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है, जैसे साहित्यिक प्रतियोगिताएं, हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, तात्कालिक भाषण और कविता पाठ, कार्यशालाएं और सेमिनार, सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग और प्रशासनिक अनुवाद से जुड़ी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, और पुरस्कार वितरण। पखवाड़े के अंतिम दिन में वर्ष भर हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। आज हिंदी पखवाड़ा केवल एक औपचारिकता बनकर ना रह जाए, इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। केवल 15 दिनों तक हिंदी का गुणगान करने और शेष वर्ष उसे भूल जाने से भाषा का विकास नहीं हो सकता। आज के डिजिटल युग में हिंदी ने तकनीक, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में हिंदी पखवाड़े की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, ताकि हम अपनी भाषा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सके। हिंदी पखवाड़ा हमें ये याद दिलाने का एक सशक्त माध्यम है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमें हिंदी पखवाड़े के मूल संकल्प को समझना होगा और इसे केवल 15 दिनों के उत्सव तक सीमित ना रखकर अपने दैनिक जीवन और कार्यशैली में हिंदी को सम्मानजनक स्थान देना होगा। तो आइए दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। संकल्प यह कि हम अपनी भाषा पर गर्व करेंगे और अपने कामकाज में इसे सहजता से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी भाषा समृद्ध है, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान सुरक्षित है। आप सभी को हिंदी पखवाड़े की ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह अपनी भाषा से प्यार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, इस गरिमामय कार्यक्रम को विराम देने के लिए आइए हम सब मिलकर हिंदी सिनेमा और साहित्य के उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहां शब्दों की शुद्धता ही संगीत की आत्मा हुआ करती थी। महान गीतकार कवि नीरज जी की कलम से निकला और किशोर दा की मखमली आवाज में पिरोया गया यह कालजय गीत हमारी राष्ट्रभाषा की कोमलता और गहराई का प्रतीक है। तो आइए साथियों, सुरीली याद के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं फिल्म प्रेम पुजारी के इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे एसटी बर्मन। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से पर, यानी हमारी दोस्ती और हमारी संगति। किसी ने सच ही कहा है कि आप मुझे अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों के नाम बताओ और मैं आपका भविष्य बता दूंगा। हमारी संगति का हमारी करियर, हमारी सोच और हमारे कैरेक्टर पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया चारों तरफ है, तो गलत संगति से बचना और सच्चे दोस्त चुनना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आखिर कैसे पहचाने कि कौन सी संगति गलत है और सही दोस्त कैसे चुने? तो सबसे पहली बात, गलत संगति को पहचानना सीखिए। अगर आपके कुछ दोस्त आपको पढ़ाई या करियर के बजाय गलत आदतों की तरफ धकेलते हैं, या बात बात पर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, या फिर हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो समझ जाइए कि ये संगति आपके लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से बिना किसी झिझक के एक सकारात्मक दूरी बना लीजिए। शुरुआत में शायद आपको अकेलापन लगे, लेकिन यकीन मानिए, गलत संगति में रहने से कहीं बेहतर है अकेले रहना। अब सवाल आता है कि सही मित्र कैसे चुने? तो साथियों, सच्चा दोस्त वो नहीं है जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके साथ सिर्फ पार्टी और मजे करे। सच्चा दोस्त वो होता है जिसके साथ रहकर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको अकेले में टोके, लेकिन दुनिया के सामने आपका साथ निभाए। मेरे युवा साथियों, दोस्त चुनते समय चेहरा या उनका स्टेटस मत देखिए, बल्कि उनके मूल्य यानी उनके वैल्यूज देखिए। देखिए कि क्या वो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, क्या वो अपने करियर को लेकर सीरियस है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप खुद ब खुद मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। याद रखिए, दोस्त वो पारस पत्थर है जो अगर सही हो तो आपको लोहा से सोना बना देता है। इसलिए भीड़ इकट्ठा करने के बजाय भले ही 2 दोस्त बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए जो आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, अपनी संगति को परखिए, समझदार बनिए और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दीजिए। और बस इतना कहूंगी दोस्तों कि जिंदगी में एक सही दोस्त आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है, और एक गलत दोस्त आपकी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। इतिहास गवाह है, दुर्योधन के पास 100 भाई और अपार सेना थी, लेकिन गलत संगति ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के पास सिर्फ एक सच्चे सारथी और मित्र थे श्री कृष्ण, जिन्होंने उन्हें जीत की राह दिखाई। तय आपको करना है कि आप अपनी लाइफ का सारथी किसे बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ऐसे दोस्त चुनिए जो आपकी ढाल बने, आपकी कमजोरी नहीं, जो आपको गिरने के लिए नहीं बल्कि आसमान छूने के लिए प्रेरित करें। तो साथियों, हमने आपसे बात की कि गलत संगति से कैसे बचें और सही

मित्र कैसे चुनें। और साथियों, आप दे देते हैं आपको आज की रोजगार सूचना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है PGT शिक्षक। पदों की संख्या है 2607। शैक्षणिक योग्यता, भारत में विधिवत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा यानी BEd होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी आज की रोजगार सूचना। साथियों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अब अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सौम्या शर्मा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को

0: जाएंगे, ये हो जाएगा तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी। तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंत दीदी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ तुम, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं, अब तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया। तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी ध्यान देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गाँव गाँव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर लिया, और लड़कियों को भी जब हमने और बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है, आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संति जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारे

0: देश भारत वर्ष अच्छा होगा, उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है। जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। अनजान के बोलों को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया दाग फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज किशोर कुमार की।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में गाया दाग फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके

0: ने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
3: हाँ खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही हुलास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सब ही सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन है। देश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए 5 एजेंडा तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकारों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पत्रकार बंधु अब 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर उपलब्ध है। और भोपाल में श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला तेज हो गया है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी

0: से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई।

ये लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
2: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
2: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
1: आओ मिलकर करें प्रयास,
2: शुद्ध पानी हो सबके पास।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। एसटी बर्मन की धुन, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और फिल्म है अभिमान।

अमानत फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, आरजू फिल्म का गीत जिसे आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिप संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आरजू फिल्म से लिया है। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है,
1: संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुनेंगे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। रात 8 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। खेल जगत कार्यक्रम में रात्रि 9:30 आज आप सुन सकते हैं एशियन गेम्स 2026 पुरुष T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वार्ताकार मोहम्मद शाहिद। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:45 और रात 10:20 पर। रात 10 बजे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर्टेन रेजर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 सुनिएगा प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए आपको जानकारी दे दें कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुन सकते हैं समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। विशेष कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद उठा सकते हैं सुबह 9:05 पर। रामस्वरूप लोधी और साथियों के गए बुंदेली लोकगीत होंगे सुबह 9:15 पर। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 सुनिएगा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक एवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक डॉक्टर विकास दवे से बातचीत। जिले की चिट्ठी इसका समय सुबह 10:00 है और 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में पंडित किरण देशपांडे का तबला वादन हम आपको सुनाएंगे सुबह 10:30। कल शाम 7:25 पर होंगे बुंदेली समाचार और 7:30 पर किसान वाणी में सुनिएगा किसान फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाए, इस विषय पर डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे इसका समय सुबह 11:00 है। 12:00 आपकी फरमाइश। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 हम आपको सुनाएंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 8। महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00 आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2:00 2:30 पर आपकी फरमाइश में और शाम 5:33 शाम 6:00 और 6:45 पर फिल्म संगीत के अंतर्गत। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान इसका समय है कल शाम 6:30। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा सुनिएगा रात 8:00 8:35 पर फिल्म संगीत। 9:30 विज्ञान भारती आकाशवाणी दिल्ली से एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से और कल रात 10:20 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का कार्यक्रम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत। 7 शहरों में 351 बसों को हरी झंडी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिंगरौली में बलराम कृषि महोत्सव, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। और वाराणसी से वडनगर तक जारी जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा का सागर में उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। श्री गडकरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 5 एजेंडा तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने कहा,
4: बड़े इनोवेटिव मॉडल में आज इन बसेस का शुभारंभ किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस है। और इन सब के कारण जो आम गरीब जनता है, प्राइवेट टैक्सी में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो पहल की है, ये वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था का निर्माण और उसका शुभारंभ आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
3: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में CCTV, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का मार्ग दिखाता है। प्रदेश में हरित ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में निवेशक संपर्क और हितधारक परामर्श कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिरसिंहपुर की 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 50 से 100 मेगावाट घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं और सरकार की नीतियों की जानकारी दी। 39 से अधिक डेवलपर कंपनियों और प्रमुख ऊर्जा और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सिंगरौली में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में 3,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और जिले की प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल विविधीकरण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन को अपनाने की अपील की।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में बड़वानी जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस एवं सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा से संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ पर जिला मुख्यालय बड़वानी तथा सेंदवा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के तहत आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसिकल, वरिष्ठ एवं श्रवण दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण वितरित किए गए। अभियान के तहत जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल स्तर की शालाओं में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महाविद्यालय स्तर पर जिले के महाविद्यालयों में स्वच्छता एवं सेवा के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई जाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली जा रही है। 17 सितंबर को वाराणसी से प्रारंभ हुई ये यात्रा देश के 10 राज्यों से होकर गुजर रही है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा में शामिल सेवा यात्रियों और विभिन्न स्थानों से जुड़े लोगों से वर्चुअली संवाद किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सागर के बंडा में सेवा संकल्प यात्रा के 9वें दिन 2 टोलियों के आगमन पर सभी यात्रियों का स्वागत किया। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग विसर्जन घाटों पर पहुंच रहे हैं। विसर्जन जुलूसों के साथ घाटों पर काफी भीड़ भी देखने को मिल

रही है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। अनंत चतुर्दशी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। प्रशासन क्रेन पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं का विसर्जन भी करवा रहा है। भोपाल में नगर निगम ने शहर में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मूर्ति संग्रहण स्टॉल लगाया है।

घर पर भी श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में अन्नदान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की मदद और पौधारोपण को भी पूर्वजों की स्मृति में किए जाने वाले सेवा कार्यों के रूप में महत्व दिया जाता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय रहने से आधे प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। जबलपुर समेत 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बाग सेवनिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आज आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक में स्थापित करने के लिए 92 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें 35 पत्थर की और 57 मेटल की प्रतिमाएं शामिल हैं। मंडला जिले को प्राप्त मोबाइल फॉरेंसिक वैन का पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने शुभारंभ किया। वैन की मदद से अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्राथमिक फॉरेंसिक जाँच में तेजी आएगी। मंदसौर में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों के मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श और औषधियां वितरित की गई। और छिंदवाड़ा की आंगनवाड़ी केंद्र खिरसाडोह में आज पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत। 7 शहरों में 351 बसों को हरी झंडी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिंगरौली में बलराम कृषि महोत्सव, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। और वाराणसी से वडनगर तक जारी जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा का सागर में उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे हाल चाल हैं आप औरन के? भैया देखो आज तो मौसम देखो कितो नीको हो गओ है ना, सुबह सवेरे से ही फुहार गिर रही सो मौसम बड़ो ही सुहावनो सो हो गओ है। और भैया देखो भादो को महीना चल रहो है, भादो को महीना है अनंत चौदह सौ है। और भैया रो देखो अपने इतने ई दिना को बड़ो भारी महत्व होते है ना। तो और संजोग की बात करें तो देखो भैया ई दिना संजोग ऐसो बनत है कि एक तरफ तो दस दिना से अपने घरन घरन विराजे विघ्नहर्ता गणेश बब्बा की विदाई की बेरा होत, और उतें ही दूसरी तरफ सृष्टि के पालनहार अपने श्री हरि विष्णु भगवान अनंत रूप में पूजे जाते हैं। तो भैया रे आप और अन्य देखो सभी ने पिछले दस दिना से गणपति बप्पा की खूब ही सेवा करी, और जगह जगह देखो तो भैया गणेश बब्बा के खूब ही पंडाल सजाए कर, और खूब तय अपनी बिन्ना हरण ने भौजी हरण ने अपनी भजन मंडली सजाई। और भैया देखो मोड़ा मोड़ इनकी तो का कहें, उन्हें तो इतो मज़ा आओ इतो अच्छो लगो कि और उनकी तो जई होड़ मची रहती कि हमाओ पंडाल कितो अच्छो सजो है कितो नीको सो जाए, और हमारे तय की व्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है, खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे, भजन मंडली हो रही, भजन कीर्तन हो रहे, रोज़ सुबह संजय आरती हो रही, प्रसाद बट रहो। तो जब आरती और प्रसाद बटत है तो देखो भैया बात जब बाकी गूंज जो होते आरती की गूंज बात से पूरा मोहल्ला पूरा पूरा पड़ोस जोन है बड़ो ही एक अच्छो सो माहौल हो जाते है ना। तो भैया देखो आज चौदह से सो मन बड़ो भारी से वो हो रहा है, काहे से देखो दस दिना हम और अन्य अपने गणेश बब्बा की खूब ही सेवा करी रात दिना।

अपने संगे रहे, और जब विसर्जन करवे जा रहे तो मन कितना तो दुखी हो रहो। अब सुबह से ही देखो भैया विसर्जन को सिलसिला चल रहा है। अब जब आते हम आ रहे थे तो हमने देखो कि सवाई हो रहे हैं, बड़े जोर शोर से ढोल नगाड़े बजात भए, गुलाल उड़ात भए, अब जो गणपति बप्पा हैं उन्हें ले जा रहे थे, और सवाई के सवाई मिलके जय जयकारा लगा रहे थे कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। तो भैया हरो सांची कहें तो ई विदाई को मतलब जो नहीं है कि बप्पा हमारे बीच से चले गए, बल्कि जी को अपन और जई अरज कहें कि जई अरज के संगे अपन उनको विसर्जन करते हैं कि वे हमारे सब कष्ट, हमारे सब विघ्न, हमारे सब संकट को हर ले और हमारे घर आंगन में खुशियां सुख समृद्धि छोड़ के जाएं। तो भैया अब बात करते हैं अनंत चौदस की। तो भैया आज के दिन जो है विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा को विधान सो है। भैया रो कहते ना कि अनंत ना जाको को ओर ना छोड़, है ना, और भैया ना आदि ना अंत। तो ई दिना का है कि जो सूत को डोरा होते हैं बामे 14 गांठे लगाते और 14 गांठन की भगवान के 14 भुवन यानी 16 लोक के प्रतीक के रूप में सो मानी जाते। और फिर भैया रो अनंत की पूजा कुमकुम हल्दी चंदन से पंचामृत से धूप दीप से पूजा करके विष्णु भगवान के चरणन में जो अनंत को अर्पित करो जाते। और भैया पूजा पाठ होते है, कथा कहानी होते और बाकी बात प्रसाद बटाते हो, बाकी बात भैया जो ई डोरा जो है वो अपने भैया रे सीधे हाथ में बांध देते हैं और अपनी बहन बेटियाँ जौन है वो ई पवित्र डोरा को डेढ़े हाथ में बांध देते हैं। और भैया जी को बांधवे को जो ही मतलब है कि श्री भगवान नारायण हरि की जो कृपा है वो अपना अपन सब पे बनी रहे, अपने धर्म की रक्षा को अपन संकल्प लें, अपने हाथ में जो ईखो जो अपन ने जो लव है तो वो अपन संकल्प जी को लें। और भैया हरो अब बात आते भोग की, तो आज भैया हरो पूजा पाठ में भोग प्रसादी को भी बड़ा महत्व है। अपनी बिन्ना हरे देखो सुबह सवेरे रसोई में कितने अच्छे अच्छे व्यंजन सो बनाते हैं, है ना, खीर पुआ अनरसा बनाते हैं और फिर घर परिवार में जो पूरा परोस में जब प्रसाद बांटो भी जाते हैं। और भैया देखो जो प्रसाद बांटवे की परंपरा अपन को जय सीख देते हैं कि हमें कछु भी अकेले नहीं खाने, मिल बांट के अपन खाएं, सबको प्रेम से दें, कोनो भूखो ना रहे। वो कहते हैं ना कि भूखे को भोजन करावे में सबसे बड़ा सुख है। तो भैया सबके पेट भरे रहे और सभी सुखी रहे। तो भैया हरो हर त्यौहार जो होते हैं वो अपन का जई सीख देते हैं कि हम सभी अपने मन से बैर भाव को भुला के नेकी और धर्म कर्म के रास्ता पे चलें और बप्पा के आशीर्वाद से सबके अमंगल दूर होएं और भगवान अनंत की कृपा से सबके जीवन में सुख शांति आए। तो भैया हरो काहे ना देखो इतनो अच्छो एक माहौल सो है तो काहे ना भजन सुन लो जाओ। तो सुनते अपनों ने गणेश भजन अशोक प्रजापति और साथियों के स्वर में।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की

0: में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: भैया रे देखो, आज है 25 सितंबर, यानी हम सबके पथ प्रदर्शक और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। और आज को दिन जो है हमारे देश और समाज को हम भैया देखो नई चेतना नई सीख देवे वालों बड़ों ही खास देना है। भैया रे आपको पता है कि पंडित दीनदयाल जी की पूरी उनको पूरा जीवन सादगी और त्याग और निस्वार्थ सेवा को ऐसो उजियारो दीप हतो जो आज भी हमारो रास्ता उजियारो कर रहो है। उनने दुनिया का एक बड़ो अनमोल सिद्धांत दो एकात्मवाद मानववाद और अंत्योदय। अब भैयारो देखो बात मन में जाओ ठहते कि जा अंत्योदय है का आखिर, तो भैयारो अंत्योदय को सीधो सो अर्थ जई है कि समाज की सबसे पिछली पांत में ठाड़े हमारे जो गरीब भैया रहे हैं कमजोर भैया रहे हैं उनको उद्धार हुए। तो भैया देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहते थे कि जब तलक गांव खेड़ा के आखिरी छोर पे बैठे अपने किसान भैया हरे हैं अपने श्रमिक भैया हरे हैं दस्तकार भैया हरे हैं अगर उनको भला ना हुई है उनके तन पे कपड़ा लत्ता ना हुई है थाली में भरपेट भोजन ना उनको मिल पाए है तब तलक देश की असली तरक्की नहीं मानी जा सकत। और वे कहते थे कि देश के विकास में मतलब देश के विकास की जो नाप है वो अपन खा शहरन की ऊंची इमारतन से नहीं नापने बल्कि गाँव के गरीब चेहरे के मुस्कान से होनी चाहने। तो भैयारो दीनदयाल जी को विश्वास यही हतो कि हमाओ भारत तभी मजबूत बने हैं जब हमारे गांव स्वावलंबी बने हैं। उनने कुटीर उद्योग खेती किसानी और स्थानीय हुनर खां बढ़ावा देवे की बात कही। उनके विचारन में जो है प्रकृति और इंसान के बीच बड़ो ही गजब को तालमेल हतो। वे सिखाते थे कि कुदरत को अपन को दोहन नहीं करने है उखो पोषण करने है। भैया देखो जितो अपन ले रहे हैं उतो ही अपन को लौटाने भी है। तो आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद कर रहे हैं तो आज हमाओ भी भैया जही धर्म बनाते कि हम केवल उनकी भाषण तक ही हमारे सीमित नहीं रहे बल्कि उनके बताए रास्ता पर चलने को संकल्प लें और अपने आसपास के जो अपने कमजोर लोग हैं उनकी मदद के लाने अपने हाथ आगे बढ़ाएं और गांव और समाज में सब मिल के रहे और मिलजुल के देश के नव निर्माण में अपना सहयोग दें। तो भैया हम सभी पंडित दीनदयाल जी के चरणन में श्रद्धा सुमन अर्पित करत भाई यही कहें कि हम उनके बताए रास्ता पे चल हैं और जैसो भी चाहते कि देश अपनो ऐसो बने ऐसे ही अपने देश को बनावे में हम सब मिलके सहयोग दे हैं और देश को ऊंचाई के रास्ता पे ले जाए। और भैया हरो अब लेते हैं एक बार अल्प विराम बाकी बाद आपसे मिलते।
0: देश में सुगम आवागमन बेहतर शिक्षा उत्तम स्वास्थ्य बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: और आइए भैया अब अपन चलत हैं डॉक्टर विनोद कुमार के पास जो अपन खां जानकारी दे हैं कृषि सूचना के स्रोत और उनका उपयोग और इनसे जानकारी ले रहे हैं अपने सोहन सिंह भैया। तो चलत है डॉक्टर विनोद कुमार के पास और लेते हैं जानकारी।
3: किसान भाइयों नमस्कार। हमारी जो खेती किसानी है वो तो हम

0: रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं, हमारी सरकार के प्रयास और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं उसमें हम बहुत सुनते हैं डिजिटल इंडिया। कृषि में कैसे इंटरनेट तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़े, आज इसी विषय पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर से। डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। प्रधानमंत्री का बहुत जोर है कि हमारे किसान की अर्थव्यवस्था, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन है, वो कैसे भी सुधरे और उसको ऊपर आने के लिए उसका जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ना बहुत जरूरी है, तो इस दिशा में सरकार के जो प्रयास हैं उसमें सूचना प्रौद्योगिकी और जो डिजिटलीकरण है उसका महत्व बढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय कृषि की जो व्यवस्था है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, उसके उपयोग की क्या संभावनाएं होगी?
1: ये सूचना का युग है और अगर हम देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इस चीज पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए।
0: उनका ये मानना है कि जब तक किसान को इसका लाभ नहीं मिलता तब तक ये प्रयास अधूरा है।
1: कृषि हमारे भारत का अगर देखा जाए तो विकास का एक मुख्य आधार है, तो ये बिल्कुल सही है कि सूचना और संचार क्रांति का लाभ इस क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक जानकारियों का लोगों में अविलंब हस्तांतरण महत्वपूर्ण है।
0: दिक्कत तो यही है सर कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो किसानों को जानकारी होनी चाहिए वो उनको समय पे नहीं मिल पाती, कभी उनको मिल ही नहीं पाती, किसान उससे महरूम है और समस्या वहीं की वहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी तकनीकी जब तक जल्दी किसान तक नहीं पहुंचेगी उसका सही उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने वर्षों से अनुसंधान कार्यशालाओं में कृषि की उन्नत विधियां, अच्छी किस्म की प्रजातियां, कीटों एवं रोगों के नियंत्रण की विधियां आदि का विकास करते आ रहे हैं। इनकी जानकारी कृषि सूचना तकनीक के माध्यम से प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचाई जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी न केवल प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार के लिए आवश्यक है बल्कि इसके उपयोग से विभिन्न कृषि कार्यों को जल्दी से और आसान तरीके से भी किया जा सकता है। सामान्यतः कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान को हम दो तरीके से देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो कि सीधे कृषि की उत्पादकता से संबंधित है, जैसे प्रेसिजन फार्मिंग जो कि अभी विकसित देशों में काफी प्रचलित है। इसमें हम रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र आदि का उपयोग करते हैं।
0: तकनीकी की उन्नत जो अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी तकनीकें हैं जो कॉर्पोरेट खेती के लिए हम थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती है। दूसरा उपयोग है वो हम अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं जिसमें किसानों को नवीनतम जानकारी तथा निर्णय लेने में उनको समर्थ बनाती है।
0: ये हमारे छोटे किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी।
1: बिल्कुल। जैसे कि समय से सही विश्वसनीय सूचनाओं को प्रदान कराना। अभी हमारे किसान भाइयों को क्या है, नवीनतम सूचनाओं के लिए परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना होता है जो कि काफी धीमे हैं तथा उनकी विश्वसनीयता पर भी थोड़ा संदेह रहता है। ऑनलाइन शिक्षा, रेडियो, उपग्रह, कंप्यूटर तथा इंटरनेट और दूरदर्शन जैसे आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी का विस्तार करके किसानों की जागरूकता, दक्षता तथा उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो तकनीकी है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं या बहुत सारे शोध संस्थान हैं, इन सब पे कार्य करते रहते हैं, इनके द्वारा किए गए एक प्रयास हैं वो किसानों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा या आपके संस्थानों द्वारा क्या कोई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से कृषि सूचना तकनीकी जो है वो किसानों तक आसानी से पहुंच सके?
1: भारत सरकार, कृषि डिपार्टमेंट ये तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं जिनके माध्यम से किसान भाइयों को इन तकनीकियों के बारे में जानकारी हो सके। जैसे कृषि साहित्य भी प्रकाशित किए जाते हैं और उनका वितरण किया जाता है ताकि किसान भाई उसमें पढ़ सकें। दूसरा कृषि दर्शन जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम भी चलता है, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक एक घंटे का कृषि दर्शन कार्यक्रम चलाया जाता है।
0: भारत सरकार ने डीडी किसान चैनल
1: ही चला दिया जो हर समय इस पे
0: कृषि के बारे में जो
1: बिल्कुल सारी तमाम समस्याएं, तमाम जानकारी उस पे हमेशा उपलब्ध रहती है।
0: रेडियो तो है
1: कार्यक्रम, तो इसके माध्यम से भी हमारे किसान भाई तमाम जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको सुन सकते हैं। किसान कॉल सेंटर जिस पर किसान भाई अपनी समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार तमाम प्रदर्शनियां लगाते रहते हैं, मेले कराते रहते हैं जहां पर किसान भाइयों को तमाम जानकारी दी जाती है एक्सपर्टों के द्वारा, वहां पे उनको बताया जाता है। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम भारत सरकार चलाती रहती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती रहती है, अनुसंधान केंद्र है उनके यहाँ पर भी कार्यक्रम इस तरीके लेके चलते रहते हैं, जहाँ से किसान भाई नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, हमारे कुछ किसान साथी हैं कंप्यूटर से या इंटरनेट तक उनकी पहुंच हो सकती है भी, तो कैसे वो इंटरनेट या कंप्यूटर का अपनी खेती किसानी में उपयोग कर पाए, ये थोड़ा उनको बताइए।
1: बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर और इंटरनेट आज काफी कुछ लोगों तक इसने अपनी पहुंच बना ली है। कंप्यूटर इंटरनेट का कृषि में उपयोग विभिन्न तरीकों से हम कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर मौसम संबंधी सूचनाएं, बाजार भाव आदि की नवीनतम जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं वो अगर उसको चला रहे हैं, या पास कोई कंप्यूटर का साइबर कैफे है तो वहां पर
0: वहां से जानकारी
1: ले सकते हैं, तो किसान भाई वहां जाकर के आजकल जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनकी सभी की जो है वेबसाइटें उपलब्ध होती हैं, तो वहां पर जाके वो जानकारी ले सकते हैं अनुसंधान केंद्रों की, वहां पर कौन कौन सी।
0: मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो वेबसाइट हैं जिनको किसान भाई विजिट कर सकते हैं, जिनके माध्यम से वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट पे, वो कुछ वेबसाइट के बारे में आप जरूर बताएं।
1: कई वेबसाइटें हैं जहां पर किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। आपको बताएं कि आजकल कुछ इंटरनेट पर खोजी वेबसाइट्स भी हैं।
0: अच्छा,
1: तो अगर पर्टिकुलर कोई वेबसाइट अगर नहीं भी पता है तो आप उन खोजी वेबसाइट्स की सहायता ले सकते हैं।
0: आपको किसी विषय के बारे में अगर जानकारी चाहिए, आप वहां पे उस विषय को डालिए और संबंधित वेबसाइट जो है वो
1: बिल्कुल मिल जाएगी। अब जैसे मान लो किसी को हम सरसों से ही संबंधित चाहिए जानकारी, तो अगर उनको हमारे संस्थान की अगर वेबसाइट पता है तब
0: वो वेबसाइट पे ही कर सकते हैं।
1: अगर उनको नहीं पता है तो जो खोजी वेबसाइट्स हैं उनके खोज विकल्प में आप सरसों अनुसंधान लिखेंगे, हिंदी में भी उपलब्ध हैं वेबसाइट्स, तो वहां पर हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र की वेबसाइट उनके पास आ जाए और भी जहां जहां पे
0: जो भी इससे संबंधित चीजें हैं संबंधित
1: वहां पर आ जाएगी। जैसा कि आपने कहा कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं, तो हम महत्वपूर्ण वेबसाइट्स के भी नाम बताएंगे। जैसे अभी भारत सरकार ने ही एक फार्मर पोर्टल चलाया है जिस पर किसान भाई अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां रजिस्टर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है उनकी सारी जानकारी समय समय पर आपको उससे मिलती रहती है।
0: मतलब तो एक दफे किसान साथी अगर उस पर रजिस्टर अपने आप को करवा देता है मोबाइल नंबर के साथ, तो किसान साथियों को समय समय पर जो भी जानकारियां हैं सरकार द्वारा देने का प्रयास किया जाता है वो उनके मोबाइल पे आती रहेंगी क्या?
1: बिल्कुल आती रहेंगी। उस पर जानकारियों के साथ साथ उनको फॉरवार्निंग भी मिलती रहती है कि अब समय कैसा रहेगा, आगे का मौसम कैसा रहेगा, तो वो भी एडवाइजरी मिलती रहती है। इस वेबसाइट का पता है www.farmer.gov.in
0: www.farmer.gov.in।
1: इसी तरीके से अन्य भी वेबसाइट्स हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर जानकारी ले सकते हैं। एक और वेबसाइट है कृषि सहकारिता विभाग की है www.agricrop.nic.in
0: www.agricrop.nic.in।
1: ये कृषि एवं सहकारिता विभाग की है, भारत सरकार की वेबसाइट है। इस पर जितनी भी कृषि संबंधी नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है।
0: तो किसान साथियों को चाहिए कि आपका जो फसल का विषय है उससे संबंधित विभाग की वेबसाइट को वो खोज सकते हैं, चाहे वो कृषि सहकारिता विभाग की हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हो, या कृषि विभाग की हो, चाहे वो आपके सरसों अनुसंधान निदेशालय की हो।
1: बिल्कुल।
0: तो इन सब वेबसाइट को किसान साथी इंटरनेट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: और स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया, अब जैसे मान लो भारत में हो रहे विभिन्न फसलों के अनुसंधानों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, तो एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट है www.icar.org.in। तो इस पे भारत वर्ष में विभिन्न अनुसंधान संस्थान भी लिंक हैं इस पे, तो
0: और उनके द्वारा जो अनुसंधान किए जाते हैं उनकी जानकारी
1: सारी जानकारी उस पे उपलब्ध है। इसके अलावा भी जो मोबाइल एप्स डेवलप की गई हैं, किसान भाई उनका भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी सरकार द्वारा डेवलप की गई हैं। हाल ही में एक डेवलप की गई है किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन है। अगले 5 दिन में क्या मौसम रहेगा, व्यापार बाजार की कीमतें, कृषि परामर्श, पौध संरक्षण, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि के बारे में इससे जानकारी ले सकते।
0: मतलब किसानों को जो जानकारी चाहिए छोटी मोटी वो सारी जानकारियां इस किसान मोबाइल ऐप पे आपको उपलब्ध मिलेगी।
1: दूसरी एक और मोबाइल एप्लीकेशन है एम किसान। किसान भाई वो विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजे जा रहे परामर्श और सूचनाओं की जो जानकारी है वो इस मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं
0: एम किसान
1: से। और अभी एक महत्वपूर्ण जो एक और है, एक एप्लीकेशन डेवलप हुई है क्रॉप इंश्योरेंस, जिसका काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है, फसल बीमा।
0: जी जी,
1: इसका उपयोग करके किसान भाई फसल बीमा की जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन सी फसल बीमा के अंदर कवरेज, उसका क्या प्रीमियम है,
0: आएगा वो भी जानकारी इसमें मिलेगी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्रीमियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। के साथ साथ ये भी है कि ये दोनों ही भाषा में है।

0: हिंदी और इंग्लिश में भी है इस समय, और क्षेत्रीय
1: जी
0: भाषाओं में भी इसको अभी डेवलप किया जाएगा, तो किसान भाई इसको अपनी भाषा के अनुसार भी यूज कर सकते हैं। एक और अभी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है, एग्री मार्केट।
1: एग्री मार्केट
0: इस ऐप के माध्यम से किसान भाई अपने आसपास के 50 किलोमीटर की रेंज में जो भी मार्केट उपलब्ध है उसकी जानकारी बड़े आसानी से ले सकते हैं।
1: यानी किसानों को जो भी मंडी भाव चल रहा है वो उनको
0: घर बैठे मिल जाएगा।
1: कृषि सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में और उसके उपयोग के बारे में आपने जो किसान साथियों को जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो भैया देखो, अबे हमारे सुन रहे हते, जानकारी ले रहे हते कृषि सूचना के स्रोत और उनका उपयोग, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार। तो भैया हरो, हमें उम्मीद है कि आप सभी ने जब भेंटवार्ता को सुनो हुई है और उनने जौन डॉक्टर विनोद कुमार ने जौन हमें जानकारी दी, वह जानकारी को आपने सुन के लाभ भी उठाओगे। और भैया अब लेते हैं एक तनक विराम।
3: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
4: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
3: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: और आइए अब अपन सुनते हैं ये ख्याल आजाद सिंह यादव के स्वर में।

प्रशासन ने हम सभी की तरक्की के लाने कई योजनाएं चलाई हैं, उनमें से एक योजना है किसान सम्मान निधि योजना। और भैया जी, आप लोगों के लाने बड़ी मददगार हुई है। अब देखो ना, बीज खरीदने हैं, कृषि यंत्र खरीदने हैं, खेती से जुड़ो सामान लेने हैं, तो भैया अब कौन को मोहताक है ना। अब देखो, शासन हर साल हमारे किसान भैयारन को 6,000 रुपया की आर्थिक मदद देते, और ये पैसा एक मुश्त नहीं बल्कि 2,000 की 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीना के फेर में सीधे बैंक में भैयारे आ जाते। और सांची कहें तो भैया, ई पैसा किसानी के वक्त जैसे बड़ी राहत मिलत है। काहे से देखो, जब बोनी को टाइम होता है तब खाद बीज दवा लेने हैं, तो अब कई बार का होता है कि इन सब के लाने कबू कबू का हो पैसा नहीं है, हाथ तंग हो जाते। अब्बा टाइम पे जब रुपया नहीं होते तो कौन उसे कर्जा मांगत फिरो। लेकिन अब जब ई सम्मान निधि जब जो है बासे, अपने छोटे मोटे खर्च अपनी जेब से आराम से निपट जाते हैं, और कौनों के आगे अपन का हाथ फैलावे की जरूरत भी नहीं पड़त। तो भैया रो, अब तो जई हम आपको सलाह दे हैं कि आप और जय योजना से जुड़ो, और अगर आपको नाम नहीं जुड़ो है जय योजना में, तो आप और पीएम किसान पोर्टल पे जाके अपने पास के जनसेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पे जाके पंजीयन करा सकते हो। और भैया देखो, ई में कहा होता है कि जमीन की खतौनी के कागज की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी चाहने पड़ते हैं। और भैया एक बात और है कि यदि आपने की ई केवाईसी नहीं कराई है तो आप जी को लाभ नहीं ले पाओ, आपके जो बैंक में जो खाते में जो पैसा है वो सीधे नहीं आ पाए। तो आपने अभी तक अगर नहीं कराई है कि ई केवाईसी, तो और आपको जो बैंक खाता आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं है तो भैया जरूर ही करा लें। अब देखो ना, हरेंद्र दद्दा ने ई केवाईसी और भू सत्यापन नहीं करा हो तो तभी उनको काम रुक गया। अब वो जैसे भी जा काम को करा ले हैं, उनको पैसा सीधे बैंक में उनके खाते में आ जाए। और भैया देखो, फिर भी कछु परेशानी अगर आ रही है तो आप पीएम किसान हेल्प डेस्क पे संपर्क कर सकत हो, या अपने कृषि मित्र, ग्राम सेवक या पटवारी से मिलके जा जानकारी ले सकत हो और जी को लाभ उठा सकत हो। और भैया चलते चलते एक लोकगीत हो जाए, दादरा हो जाए, तो अपन सुनते हैं अरुणा मिश्रा के स्वर में ये दादरा।

और भैया देखो अब जावे की बेरा हो रही, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, और चलते चलते आपको बता दें कि अगला कार्यक्रम रविवार को हुई है जी, में हम आपको घर आंगन जो अपनी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लाने लेके आए हैं। तो घर आंगन में आप सुने हैं गृह वाटिका कैसे तैयार करें जय विषय पर डॉक्टर शोभना गुप्ता जानकारी दें। तो अभी अब जावे की बेरा हो रही है, हम आपसे विदा लेते हैं, सभी को आरती की, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरहत नाज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
4: शुक्रिया फरहत।
2: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
3: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
2: जी।
3: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
2: जी। सर,
3: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
2: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
4: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
2: सर, ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ,

0: फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
0: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट SINCOM-3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
0: जी।
2: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में INSAT-1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं, ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
0: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी 1 सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी 1 सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है, तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
1: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे हम मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं, वहां आप देखिए एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले, ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था, एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को, और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
0: राजारमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
1: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है, ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
0: बिल्कुल राजा रमन जी।

0: चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
1: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
0: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी दो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
2: पहले से ही

0: देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं है। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है। और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो विक्रम 1 जो उन्होंने लॉन्च किया,
1: जी
0: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है। और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी
1: जी
0: तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर, वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही
1: जी
0: महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राधारमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
2: इससे पहले मैं डॉक्टर काले
1: जी
2: ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी,
1: जी
2: बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया है।
1: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
2: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
2: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के 2 युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
0: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
1: जी।
0: और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था, जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
0: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
2: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत

0: में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
1: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो।

0: मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुँचाया?
0: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
1: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी, तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है, वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
1: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
2: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
1: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
2: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है
1: जी।
2: और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स हैं जो स्कूल के अध्यापक हैं जो कोचेस हैं इनको चाहिए अनुशासन।

0: अचित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आ गए 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब एसएलवी का काम करना चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर्स है, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसीलिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
0: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए और बेहतर ही हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं।
1: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
1: जी राजरमन जी,
0: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
1: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
2: हमने जब इनसाइट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसाइट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देख सकता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
0: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
0: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू कि हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल हैं जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो then we will find the solutions to all our problems.
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए
1: राजनमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
0: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना

0: जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें, वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए। और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत समीर का लिखा हुआ है, निखिल विनय का संगीत, आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम।

हम तुम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को अब समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
3: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति

0: और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
0: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
2: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
0: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
3: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4,000

0: अंबेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
2: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticises those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Ellen Govan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख्वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुजाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फासले तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बारानिका एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिर-ख़ाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में ख़वातीन बड़े पैमाने पर खुदकफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने सामाजिक खिदमत, सामाजिक इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाज़े किया कि वडनगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुजाकरात जरूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुजाकरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मजीद मौक्कर करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात में ताखीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक्वामे मुत्तहदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनअक़दा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वामे मुत्तहदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाही ख्वाहिश मजीद मजबूत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के खिलाफ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि

0: स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
1: इसके बाद दिसंबर 2019 में काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। साथ ही वजारत दिफा के दायरे में ही CDS की सरबराही में फौजी उमूर से मुतालिक नए महकमे की तश्कील को भी मंजूरी दी गई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS के तकर्रुर ने हुकूमत के लिए सभी फौजी मामलात पर राबते के लिए वाहिद कड़ी का काम किया।
2: The appointment of the Chief of Defence Staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one point contact, one point advisor to the Defence Minister, and of course in the security they meet whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to. At any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
1: CDS के उदय की तश्कील के बाद अब तीनों अफवाज को आला सतह पर मौसर क्यादत मिल गई है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी का कौमी सदर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट नितिन नबीन ने कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी हमेशा अंत्योदय यानी सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्की के फायदे पहुंचाने से तहरीक पाती है। उन्होंने कहा कि किसी जज्बे के तहत गांवों और कस्बों तक तरक्याती स्कीमों की तौसी की जा रही है। जयपुर के नजदीक दादिया में मुनाकिद सेवा संकल्प सभा से खिताब करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। जनाब नबीन ने कहा कि सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्याती स्कीमों की यकीनी फराहमी में अवामी नुमाइंदों को अहम रोल अदा करना होता है। जनाब नबीन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का असल मकसद तब पूरा होता है जब वो खुशी और गम के मौके पर अवाम के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद जनाब नबीन ने बिरला ऑडिटोरियम में नौजवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जनाब नबीन ने नौजवानों से तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कायदाना रोल अदा करने की अपील की। अमरीका और ईरान अपने दरमियान जारी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मरहलेवार तरीक़ेकार पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने तजवीज़ पेश की है कि अगर अमरीका अपनी नाकाबंदी और दीगर इक्तसादी पाबंदियां ख़त्म कर दे तो ईरान आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान ने सालिसी करने वालों के ज़रिए एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत ईरान अपनी शरायत पूरी होने की सूरत में आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा। इन शरायत में 7 दिन के अंदर तमाम महाजों पर जंगबंदी, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और तेल पर आयद पाबंदियों में रियायत शामिल हैं। इस दौरान एक अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने भी कहा कि ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार है और वो मजीद लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता है। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में भारत ने कुल 23 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 484.6 निशाने लगाए और 6.6 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की जोड़ी से आगे रहे। इस दौरान एशियाई खेलों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। वहीं खवातीन के पोल वॉल्ट में भारतीय एथलीट बारानिका एलन गोवन ने कांसे का तमगा जीता। इसी तरह खवातीन के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी कांसे का तमगा अपने नाम किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और खवातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरी ज़्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, क्रिकेट के रोमांच और एशियन गेम्स के उत्साह का जब संगम होता है तो खेल प्रेमियों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। जापान में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर पुरुषों का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें एशिया की 10 टीमें स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतर रही है। भारतीय टीम 2022 एशियन गेम्स की पुरुष क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता है और इस बार भी टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। उम्मीद करते हैं भारत इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर हम सभी को गौरवान्वित करेगा।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एशियन गेम्स 2026 पुरुष टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पर यह वार्ता। वार्ताकार है मोहम्मद शाहिद।

श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के खेल जगत प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई है 19 तारीख से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और भारत से लगभग 500 एथलीट वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार मेडल्स जीत रहा है और मेडलों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। साथ में महिला क्रिकेट टीम भी गई वहाँ पर और उन्होंने शानदार मुकाबले को जीता और परचम अपना फहराया भारत का और गोल्ड लेकर आए। और अब मेंस में देखें तो भारत की पारी है और जो शुरुआत है भारत की, भारत को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है वहाँ पर और 28 तारीख से भारत क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट करेगा और उनको 3 मैच खेलने हैं और जो संभावनाएँ हैं, भारत फेवरेट दिखाई दे रहा है इसमें। और आप सभी एशियन गेम्स के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे, भारत के सभी एथलीट अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और मेडल की संख्या और लगातार बढ़ती चली जा रही है। एशियन गेम्स इस बार 2026 में जापान में आइची नगोया में खेले जा रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की इस बार भी चैंपियन बनने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और भारत 2022 में चाइना में हांगजो में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर चैंपियन बना था। उसमें ऋतुराज भारत के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने शानदार अगुवाई की थी, लीडरशिप की थी और भारत को मैच जिताया था और चैंपियन बनाया था और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था। इस बार भारत डिफेंडिंग चैंपियन की तरह इस टूर्नामेंट में उतर रहा है। 2022 में ऋतुराज की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल दिलाया था। वास्तव में श्रोताओं और क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट पहली बार 2010 में ग्वांगझू एशियन गेम्स में शामिल किया गया था लेकिन भारत ने उस पुरुष प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद 2014 में भी क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया गया, 2018 में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था और 2022 में हांगझू चाइना में क्रिकेट ने फिर वापसी की और भारत ने गोल्ड जीता और भारत का परचम फहराया। इस बार 2026 में आइची नगोया जापान में क्रिकेट फिर से शामिल है, इसलिए 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट का 4th एडिशन है, 4th संस्करण है। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 में कुल 10 टीमें हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। बाकी 6 टीमें जो हैं, अफगानिस्तान है, हांगकॉन्ग है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, नेपाल और ओमान की जो टीमें हैं वो प्रीलिमिनरी राउंड में खेल रही हैं। भारत की मैंस टीम है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में अभिषेक शर्मा हैं और संजू सैमसन हैं, ईशान किशन हैं, तिलक वर्मा हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अर्षदीप सिंह आदि ये शामिल हैं टीम में। तो एक कॉम्पैक्ट टीम है। टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है, फाइनल 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ऑलरेडी भारत 2022 का गोल्ड मेडलिस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत की गोल्ड मेडल हासिल करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, यदि उस पर हम नज़र डालें तो भारत दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत मजबूत और प्रबल दावेदार नज़र आता है। वैसे भारत को सीधे श्रोताओं क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। भारत को 28 सितंबर को ग्रुप ए की सेकेंड टीम से जीतना होगा और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 3 अक्टूबर को फाइनल होगा। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल हैं और संभावित चुनौती पर यदि नज़र डालें हम तो ग्रुप ए की टीमों में अफगानिस्तान सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चुनौती हो सकती है भारत के लिए। जापान और नेपाल भी मुकाबले में हैं, इसलिए भारत के लिए पहला बड़ा काम होगा 28 सितंबर का क्वार्टर फाइनल जीतना और उसको फतेह करना। अगर भारत क्वार्टर फाइनल जीतता है तो सेमीफाइनल में उसका मुकाबला उस ब्रैकेट से आने वाली टीम से होगा जिसमें श्रीलंका भी है। और ख़ास बात, जो स्पेशल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान फाइनल से पहले एक दूसरे से नहीं खेल सकते हैं, दोनों अलग अलग हाफ में हैं, इसलिए अगर दोनों अपनी अपनी नॉकआउट मैचेस जीतते हैं तो भारत पाकिस्तान फाइनल संभव है। भारत की स्थिति यह है कि भारत 2023 हांगझू एशियन गेम्स का डिफेंडिंग मैंस क्रिकेट चैंपियन है। 2026 भारत का प्रयास गोल्ड बचाने में रहेगा, डिफेंड करने में रहेगा। भारत की टीम बहुत ही मजबूत और कॉम्पैक्ट टीम है, उनके पास में बहुत बड़े युवा बल्लेबाज भी हैं और उनका जो फायर पावर है बहुत ही ज़बरदस्त है और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, यंग टैलेंट सेंसेशन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की टीम में जो मौजूदगी है
प्रेजेंस है टीम को और भी स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। हर्षित राणा की जगह पर यश ठाकुर टीम में शामिल किया गया है, वो काफ़ी सक्षम हैं, सशक्त खिलाड़ी हैं। भारत टीम की खास ताकत इस बार भारत के पास T20 के लिए काफ़ी मजबूत कॉम्बिनेशन है। अभिषेक शर्मा एग्रेसिव ओपनिंग बैटर हैं भारत के, संजू सैमसन, ईशान किशन विकेट कीपर बैटर ऑप्शन हैं, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब ऑलराउंड ऑप्शन हैं भारत के पास में। बुमराह और अर्शदीप को अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस पेस अटैक हैं भारत के लिए। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भारत के पास, ये कभी भी मैच का रुख बदलने में सक्षम है। वैभव सूर्यवंशी युवा बैटिंग ऑप्शन है, इसलिए भारत को गोल्ड मेडल के लिए 3 नॉकआउट मैचेस लगातार जीतने होंगे। 28 सितंबर क्वार्टर फाइनल और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 3 अक्टूबर को फाइनल भारत को खेलना है। क्वार्टर फाइनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जो 28 सितंबर को 10 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेला जाएगा। संभावित सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को वही 10 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट में इंडियन मेंस टीम अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल मैच से कर रही है। इस इवेंट में भारत को फेवरेट माना जा रहा है। वैसे तो 24 तारीख से शुरुआत हो गई है और अब ये कंटिन्यूसली मैचेस उसमें होंगे और रोबिन राउंड बेसिस पर होंगे, उसके बाद में नॉकआउट बेसिस पर होंगे। अभिषेक शर्मा और अर्शदीप जैसे दिग्गज मैच का पासा पलटने में बहुत ही सक्षम है, कैपेबल हैं। वैसे तो इंडियन वुमेन्स टीम अपना खिताब बचाने में सफल रही, अब जहां इंडियन मैंस डिफेंडिंग चैंपियन पर अपने खिताब को बचाने का काफ़ी प्रेशर रहेगा। आइए उन 5 दिग्गज प्लेयर पर हम नज़र डालते हैं जिनका इम्पैक्ट जीत पर कहीं ज़्यादा रहेगा। भारत ने एशियन गेम्स से पहले जापान को इकलौते T20 इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में 2 रन्स के मार्जिन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की है और जीत रजिस्टर कर ली है। वैसे ये लो स्कोरिंग 5 ओवर का मुकाबला था, कुछ बारिश और तूफान की वजह से उसको 20 ओवर से 5 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने अपने 32 रन्स को बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड किया और इस मुकाबले को जापान के अगेंस्ट में उसको अपने फेवर में किया, अपने पक्ष में किया और उस मुकाबले को जीता। और वहाँ की जो कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं जापान की, वो भी भारत ने पहले से अडाप्ट कर लिया है। वहाँ की कंडीशन परिस्थितियाँ भारत पूरे तरीके से उसमें फेमिलर हो चुका है, अब उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है गोल्ड मेडल को डिफेंड करने में। अब भारत निशिन का रुख करेगी जहाँ पर सारे मैचेस खेले जाने हैं, उसमें 14 मुकाबले होने हैं टोटल और करोगी स्पोर्ट्स पार्क है निशिन में और मेंस क्रिकेट इवेंट के सभी मुकाबले वहाँ पर खेले जाने हैं।

नेशन में वुमेन्स भारतीय टीम ने भी 200 प्लस का स्कोर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आशा है कि भारत मेंस टीम भी यहां बड़े स्कोर करके स्पेक्टेटर्स को, दर्शकों को आश्चर्यचकित करेंगे, सरप्राइज देंगे और रोमांचित करेंगे। 26 साल के अभिषेक शर्मा इंडियन स्टार प्लेयर शानदार फॉर्म में हैं आजकल। उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में विरुद्ध में सीरीज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो एशियन गेम्स में भी उनसे काफ़ी हमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और होप्स हैं। जुलाई 2024 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले अभिषेक अब तक 60 T20 की 59 ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 1858 रन उन्होंने बनाए हैं। एशियन गेम्स में उनके पास अपने 2000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे करने का पूरा मौका है, चांस है। अब बात करते हैं भारत को T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन की। संजू का जो एक्सपीरियंस है एशियन गेम्स में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उनके पास में जो अनुभव है अपार है और बहुत ही सॉलिड बल्लेबाज हैं भारत के। जुलाई 2015 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले संजू भले ही अब तक के 70 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हों, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही गजब का रहा है। वो इस फॉर्मेट में 27.33 के एवरेज और 157.38 के स्ट्राइक रेट से 1558 रन्स कर चुके हैं। इनमें उनकी 3 सेंचुरीज यानी 3 सैकड़े भी शामिल हैं। ईशान किशन की बात करें, वो भी एक युवा बल्लेबाज हैं और झारखंड से आते हैं। उन्होंने अभी दिलीप ट्रॉफी उन्होंने फतेह की थी और बेहतरीन बल्लेबाज हैं भारत के। तो उनकी अगर हम बात करें तो वो एक अच्छे फॉर्म में हैं। अफगानिस्तान सीरीज़ में उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली हैं और एशियन गेम्स में भी इस लेफ्टी बैटर से यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज से काफ़ी सारी हमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि वो बेहतरीन आतिशी पारी खेलेंगे और बेहतरीन पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाएंगे। मार्च 2021 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले ईशान ने अब तक 59 मैचेस में 29.84 के एवरेज से औसत से 145.151 के स्ट्राइक रेट से 1701 रन यानी कि 1701 रन बनाए हैं। अक्षर पटेल की बात करें, वो भी गुजरात से आते हैं और भारतीय टीम के बहुत ही अहम मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाज भी हैं और बैटिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं। भारत के ऑलराउंडर भी हैं, जिसने जापान के खिलाफ अभी रिसेंटली जो 5 ओवर का मैच हो गया था उसमें T20 इंटरनेशनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर उन्होंने मतलब जापान ऐसा लग रहा था जीत जाएगा, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी काबिलियत और सलाहियत से उस मुकाबले को बचाया और जीता। जापान की नमी वाली विकेट्स पर वो अपनी गेंदों से कमाल दिखा सकते हैं अक्षर पटेल। बल्ले से भी रन्स बनाने की उनमें क्षमता है और ज़बरदस्त उन्होंने प्रीवियस मुकाबलों में अच्छी पारियां खेली हैं और भारत को जीत तक पहुंचाया है। जुलाई 2015 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अक्षर भारत के लिए अब तक 105 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। बैट से उन्होंने 65 पारियों में 16.78 के एवरेज से 130.40 स्ट्राइक रेट से 755 रन्स बनाए हैं। ये उनका बैटिंग का इस T20 में उनके जो सलाहियत की तारीफ करते हैं अक्षर पटेल की, उनसे काफ़ी हमें आशाएं भी हैं। 98 पारियों में यानी कि 98 इनिंग्स में 22.53 के एवरेज से 105 विकेट चटकाए हैं। ये उनकी गेंदबाजी है और बॉलिंग एनालिसिस है। भारत के लिए सबसे अधिक T20 विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह की बात करें, इस फॉर्मेट में अपना डेब्यू उन्होंने जुलाई 2022 में किया था। जो वैसे वो 94 मैचेस में 91 इनिंग्स में 19.78 के शानदार एवरेज से 140 विकेट अपनी झोली में डाल चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल भी किया है। ये उनका कारनामा है, अचीवमेंट है। और उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी 17 विकेट चटकाए थे और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे अर्शदीप सिंह एशियन गेम्स में। फैंस को अर्शदीप सिंह से काफ़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। आशा है भारतीय मैंस टीम इस बार भी गोल्ड मेडल हासिल कर भारत को एशियन गेम्स का चैंपियन बनाएगी और अपने गोल्ड मेडल को, जो पिछला गोल्ड मेडल है, उसको डिफेंड करेगी। धन्यवाद।

अभी आपने एशियन गेम्स 2026 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे मोहम्मद शाहिद। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले।

0: कार्यक्रम खेल जगत होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। मेरे हम सफ़र फिल्म का ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दीवाना लेके 2026 आईची नगोया।
2: Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punshi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Josh Achitnampa and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
3: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
2: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
4: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और परवीन कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
2: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
5: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
2: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
4: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2 11-5 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4 11-3 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11 11-8 11-3 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
2: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
4: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
2: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
4: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12 19-21 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16 16-21 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21 11-21 से हार गई।
2: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razoor, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
3: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
2: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
5: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया. पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा. अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई. भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
2: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
4: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
2: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
3: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
2: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
4: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य हिमांश सिंह तेजस पाटिल और सचिन कर रहे थे। एशिया स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
2: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Ambrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samai Rabu, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
5: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
2: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner and they ultimately went on to win the series 2-0.
2: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
2: It's another exciting day of the Asian Games 2026 with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As a women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Joshua Chinnappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's short put final, while Praveen Chitrabal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400 meter final in athletics with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400 meter final. And athletics action ends with the women's 1500 meter final with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton, with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani. as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाए हमराज फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये स्वर्णिम सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्ति

0: करण पर जोर देते हुए इन दूरदर्शी प्रयासों का असर आज साफ जमीन पर लोगों के जीवन और देश प्रदेश की बदलती तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। आज की हमारे इस विशेष श्रृंखला में हम रुक कर रहे हैं हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं।
1: इस बारे में चर्चा करेंगे। इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी।
0: इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोनिका मौर्य जी। आप सामाजिक व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। मोनिका जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच दीपा जी।
0: चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, पहला सवाल आपसे, हम पोषण माह क्यों मनाते हैं और इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है?
2: जी दीपा जी, देखिए आप जानते हैं कि भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम पब्लिक हेल्थ चैलेंज बोलते हैं। बहुत जन में ये पोषण की समस्या होती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा कैंपेन चलता है जिसे हम बोलते, और जो कि सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत हर साल सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है। इस पोषण माह को मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ गतिविधियां करें और लोगों में एक जागरूकता लाएं, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि पोषण कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। सारे विभाग मिल के पोषण को लेकर काम करते हैं। इसका मुख्य विभाग जो ये करता है वो महिला बाल विकास विभाग, इसको मेन हेड है, लेकिन ये एक कन्वर्जेंस प्रोग्राम है जिसमें और भी अन्य जो विभाग है सब मिलकर इसमें काम करते हैं। तो पोषण माह एक तरह से हमको ये याद दिलाने की कोशिश होती है कि हमें पोषण के लिए किन गतिविधियों को करने की ज़रूरत है और लोगों का बार बार ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल मैम, कहते हैं कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक पोषण बहुत इम्पोर्टेंट होता है
2: जी।
0: ऐसा क्यों है?
2: तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड जो होता है वो 1000 दिन का जो पीरियड रहता है, तो जो गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक की उम्र रहती है बच्चे की, वो पूरे 1000 डेज कहलाते हैं। और वो जो 1000 दिन रहते हैं वो माँ के साथ साथ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बच्चे के पूरे भविष्य, उसके पूरे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 1000 दिनों में, या जो आप कह रहे हैं कि 0 से लेकर 6 साल, ऑफ कोर्स वहाँ तक ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का जितना भी भविष्य में विकास होने वाला है वो विकास इन्हीं इसी समय तय किया जाता है। और वो विकास सिर्फ और सिर्फ पोषण आधारित नहीं होता, बल्कि जो हम कहते हैं कि पूरा उसका उसके साथ खेलना, उसके साथ किस तरह से माता पिता इंगेज हो रहे हैं, उसको कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें 0 से 6 साल तक के एज में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। तो इसीलिए ये हमारा फोकस होता है और हमें ध्यान देना होता है इस एज ग्रुप में।
0: बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो जब बच्चा जन्म लेता है उससे 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पेरेंट के लिए। तो जब भी बच्चे के विकास से संबंधित सारी चीज़ें फोकस हो पाएं, इसलिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मैम, इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है?
2: तो देखिए, अगर मैं एक सरल उसमें कहूँ तो हम सभी सोचते हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चे को हमने छोड़ दिया और उसके बाद आंगनवाड़ी दीदी की जिम्मेदारी है ना। और माता पिता अमूमन, जैसे स्कूल्स में भी यही होता है कि हम स्कूल भेज देते हैं और सोचते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी, उसी तरह आंगनवाड़ी में भी होता है कि माता पिता ने भेज दिया और वो सोचते हैं कि दीदी ध्यान रखेगी। लेकिन ये हमें ये याद दिलाने के लिए इस बार की थीम कि इसमें हमारी जिम्मेदारी, एक माता पिता होने के नाते या समुदाय में रहने के नाते, या अगर हम वहाँ के पंच सरपंच हैं या हम वहाँ के स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो उसकी आंगनवाड़ी के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है, चाहे उनके बच्चे वहाँ जा रहे हों कि नहीं जा रहे। क्योंकि वो एक सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ बच्चे भेजे जा रहे हैं, बल्कि ये हमारा एक भविष्य तैयार हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको सरकार या आंगनवाड़ी दीदी की जिम्मेदारी मान के हम सबकी एक
0: सामूहिक
2: जिम्मेदारी के लिए ये बनाया गया है। मतलब ये इस बार का हमें ये याद दिलाने के लिए
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि भले ही आपके बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हो या ना जाते हो, लेकिन वाकई समुदाय की जिम्मेदारी है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी

0: चूंकि आप सामुदायिक व्यवहार एक्सपर्ट हैं, तो आम आदमी अगर आंगनवाड़ी से जुड़ना चाहता है, चाहता है कि वो अपना एक अच्छा स्टेप वहां पर दे और कुछ अच्छा करे, तो कैसे जुड़ सकते हैं?
1: तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक ये बोलूं कि इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो इस बार की थीम भी है, कि उस थीम में ना 5 ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सब थीम्स हैं, और उन सब थीम्स में से एक इम्पॉर्टेंट थीम ये है कि बच्चों को गर्म कुक्ड खाना मिलना चाहिए, ताज़ा कुक्ड और सफाई से बनाया गया खाना मिलना चाहिए। तो समुदाय इसमें सबसे पहले तो यही भूमिका अदा कर सकता है कि अगर आंगनवाड़ी में किसी चीज की कमी है तो वो उसमें सहयोग दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉनिटरिंग मोड में चले जाते हैं। हमें मॉनिटरिंग मोड में ना जाके हम कैसे सहयोग
0: बेहतर कर सकते हैं,
1: बिल्कुल सहयोग देते हुए कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं वो देखना होगा। तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर हम वहाँ के पंच सरपंच हैं या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो हम इस तरह की चीज़ों में मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम वहाँ पे मदद कर सकते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि वहाँ जो भोजन पकाया जा रहा है वो साफ़ सफाई से पकाया जा रहा है कि नहीं पकाया जा रहा, उसमें हम और कैसे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पे अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, कि जो भोजन बन रहा है उसमें पोषण की गुणवत्ता कितनी है, पोषण बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
1: तो बिल्कुल, सॉरी मैं इसमें एक और आपको बात बोलना चाहूंगी कि एक जो गाइडलाइन है वो ये भी बताती है कि हमारा एक रोटेशनल मेन्यू भी होता है, एक सेट मेन्यू है जो सेट मेन्यू वहां पे दीवार पे होना चाहिए। तो हम इस तरह की चीजों को भी इंश्योर कर सकते हैं कि क्या खाना उस मेन्यू के आधार पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, वहां पे वो मेन्यू लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। एक हमारी सोच ये भी होती है कि खाना हमेशा ऐसा हो जो कि महंगा हो, तो एक प्रायोरिटी हमारी इसमें जो इस बार की थीम है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि कैसे हम लोकल जो खाना उगाया जा रहा है उसको उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को समुदाय के सदस्य होने के नाते हम वहाँ पे देख सकते हैं कि इनको फॉलो कर रहे हैं कि
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोगों में यही भ्रांति होती है कि खाना अगर महंगा है तभी उसमें पौष्टिकता है, वरना उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह हमारे पुरातन संस्कृति में श्री अन्न का महत्व है, जो मिलेट्स है उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो वो किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों के लिए ताकि वो भी स्वस्थ जीवन शैली जिए।
1: तो देखिए, ये आपने खुद ही कहा कि मिलेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत विटामिन रिच होते हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि मिलेट्स थोड़े से हैवी होते हैं, उनको पकाना बहुत ज़रूरी है, देर तक पकाना ज़रूरी है, तो इस तरह की चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, हम अपने घर में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी एक समय के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन जब बच्चे घर पे हैं या माताएं जब घर पे हैं, किशोरी हैं, ये सभी लोग किस तरह से मिलेट्स को अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी फील्ड में जाती थी तो मैं देखती थी कि लोगों की एक सोच होती है कि इस तरह की जो चीज़ें होती है ये बहुत कमतर मानते हैं और उसको ज़्यादातर अपने जानवरों को दे देते हैं। तो हमें ये काम करने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत है कि उसको आपको इस्तेमाल करना है। लोग सोचते हैं कि गेहूं ही एक अकेला गेहूं या चावल एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें यूज़ करना है, तो फोकस हमें वापस इसमें लाने की ज़रूरत है और उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, सुरुचिपूर्ण खाना हम बना सकें, क्योंकि उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाद होता नहीं है, तो कैसे हम उसको, और मिलेट से तो सारी मतलब सारी ही चीज़ें बन सकती हैं अगर हम देखें तो हमें अगर इडली बनानी है, डोसा बनाना है, वो तक हम बना सकते हैं। तो ये सब हमें पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे वो इन सबको यूज़ कर रहे हैं अपने खाना बनाने में।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि श्रीअन्न की महत्ता बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग उनको मिलेट्स को अच्छे से लेते हैं तो वाकई इंसान स्वस्थ रह सकता है और बच्चों में भरपूर न्यूट्रिशन हो सकता है। मैम, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो बहुत दुबले पतले से कुपोषण के लक्षण हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है?
1: तो

0: पर जी मैं उसमें ये बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा देखने में दुबला पतला दिख रहा है तो हम ये मानते हैं कि अच्छा ये कुपोषित है, पर सिर्फ देखने से हमें उसको नहीं ये चिन्हित कर सकते कि बच्चा सच में कुपोषित है कि नहीं है। हर आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, एज अनुरूप कैसे बच्चे की वजन और उसकी हाइट बढ़ रही है इसका एक बकायदा मैपिंग करी जाती है, उसका एक चार्ट बनाया जाता है जो कि उनके टीकाकरण चार्ट पे लिखा भी जाता है ताकि पेरेंट्स उसको घर पे देख भी सके। जो जिसे हम बोलते हैं माता बच्चा कार्ड, जिसमें उनके टीकाकरण और बाकी सारी भी डिटेल्स रखी रहती है, वहाँ पे ये ग्रोथ मॉनिटरिंग बनाया जाता है। तो माता पिता इस चार्ट को देख कर या फिर अपनी तरफ से भी ये फॉलोअप करके कि बच्चे की हाइट में क्या सुधार आ रहा है, बच्चे की वेट में क्या सुधार आ रहा है, इसको देख सकते हैं कि बच्चा कुपोषण की तरफ तो नहीं जा रहा, उसकी वजन और हाइट रेगुलरली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये देख सकते हैं। तो वो एक साइंटिफिक तरीका होगा बजाय सिर्फ आंखों से देख के बोलने के।
1: बिल्कुल सही कहा मैम। आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्वयं सहायता समूह हैं और समुदाय किस तरह सहयोग कर सकते हैं?
0: बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आंगनबाड़ी क्या करते हैं कि उनके हर हर ट्यूसडे को, जैसे मंगल दिवस बोलते हैं, हर ट्यूसडे को अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। कभी किशोरी दिवस होता है, कभी गोद भराई की रस्म होती है, कभी बच्चों को टीकाकरण का दिवस होता है। अलग अलग दिन होते हैं और उसमें अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं समुदाय आधारित कुछ कार्यक्रम, कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स किए जाते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माता बैठक होती है, अभिभावक बैठक होती है। तो हम सबसे पहले तो यही भूमिका अदा कर सकते हैं कि इस तरह के जब भी कोई गतिविधियाँ हों उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमने बच्चे को पहुंचा दिया, अब हमारा कोई इसमें काम नहीं है। हम वहां जाएं, हम उसको अटेंड करें, वहां पे जो चर्चा हो रही है उसको सुने और जो वहां पे सिखाया जा रहा है उसको वापस आके अपने घर में भी फॉलो करें। क्योंकि कई बार होता है कि जितना आंगनवाड़ी में बता दिया सिखा दिया सिर्फ उतने ही तक रहता है, लेकिन हम घर में उन चीजों को फॉलो नहीं करते। एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको बोलूं कि हम सभी हाथ धोने को लेकर बात करते हैं, आंगनवाड़ी में जब बच्चे खाना खाते होंगे आई एम श्योर वो हाथ धुला के दीदी उनको बिठाती है, तो क्या माता जब घर में बच्चे खाना खा रहे हैं वो छोटी छोटी हैबिट्स को उनमें डाल रही हैं कि नहीं डाल रही? तो इस तरह से हम आंगनवाड़ी में बताई गई सीखों को पालन कर सकते हैं। हम और बेहतर ऐसे बना सकते हैं आंगनवाड़ी को कि अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे बीच में इस तरह का भी था अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, हाँ उसमें क्या हम भूमिका कर सकते हैं? अगर अगर हमें लगता है कि वहाँ आंगनवाड़ी में एक दीवार बनाने की ज़रूरत है, बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, कुछ खिलौनों की ज़रूरत है, तो क्या हम इस तरह की चीज़ों के माध्यम से समुदाय खुद से पैसा जोड़ कर वहाँ पे कुछ डोनेशन कर सकती है, उनको दे सकती है? ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अगर मान लीजिए आपको लगता है तो किसी भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आंगनवाड़ी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आप अच्छी आदतें करते हैं अगर वो अपने घर में बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ का सीखा हुआ वो कैसे अपने जीवन में उतार पाएंगे? तो खासकर माओं से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी आंगनवाड़ी जब बच्चे जाते हैं तो सेंटर पर दीदी जो भी उनको सिखाती हैं उस केंद्र में, तो वो चीज़ें अपने घर में बच्चे के साथ में दोहराएं ताकि वो उसके जीवन में शामिल हो सकें। मैम हम रोज सुनते हैं कि संतुलित आहार खाइए, अक्सर संतुलित आहार को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या है संतुलित आहार?
0: उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, अपना एक फील्ड का एग्जांपल शेयर करूंगी।
1: जी, जरूर।
0: कुछ समय पहले मुझे हम लोग जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारे स्ट्रैटेजी बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसा नहीं हो कि ऊपर से कोई स्ट्रैटेजी या प्लान बना के दे दिया जाए। बजाय इसके हम जिसे बोलते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, यानी कि व्यक्ति या इंसान जिस भी कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम प्रोग्राम बनाएं। तो इसी तरह के एक प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं खंडवा में मैंने विजिट किया था और वहाँ के एक ब्लॉक में मैं गई थी एंड आई वाज सरप्राइज, मतलब वहाँ जाके मैं बहुत कुछ चीज़ें सुन के मैं बहुत सरप्राइज हुई। फॉर

0: एग्जांपल, मुझे ये वहाँ जाके पता चला कि जैसे मैं एक आंगनवाड़ी की बैठक में थी, तो वहाँ पे लगभग 12 बज रहे थे और कुछ गर्भवती महिलाओं के साथ मैं बैठक कर रही थी. आप मानेंगी, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खा के आई हैं, तो उन्होंने कहा चाय और बिस्किट. 12 बजे का समय था, फुल टर्म प्रेगनेंसी थी और 12 और वो बोल रही थी कि चाय और बिस्किट. उसी तरह एक स्कूल में हम गए, और क्योंकि मैं अनीमिया मुक्त भारत पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो वहाँ पे जब मैं गई और बच्चों से पूछा कि जब आपको ये आयरन की गोली मिलती है तो आप उसको कैसे खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो मिलती है तो हमें स्कूल में मिलती है और हम दिन भर कुछ नहीं खाते, जब हम घर जाते हैं तब हम उसे खाते हैं, तो क्योंकि वो कुछ खाने के बाद उनको वो खाते हैं, और उस बीच में जो वो रास्ते में जाते हैं वो उस गोली को फेंक देते हैं. तो देखिए, हमने सरकार क्या कर सकती है, सरकार आपको प्रोवाइड कर सकती है, चीजें दे सकती है, लेकिन उसको लाना, उसको खाना, उसको अपनी आदत में शुमार करना, वो समुदाय और व्यक्ति का खुद का काम होता है. और यही जब हम सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति खुद से समझे. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि बैलेंस्ड मील क्या होगी. तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी हमारी जो इंडियन थाली होती है वो अपने आप में एक बैलेंस थाली होती है. हम सब जानते हैं कि उसमें रोटी, चावल, दाल, सलाद, रायता या कुछ सब्जियां, ये सब सब चीजें रहती हैं. तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जितनी रंग बिरंगी हमारी थाली होगी उतनी हमारी थाली बैलेंस्ड होगी. हमें ये ध्यान रखना है. और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चाय और बिस्किट खा लिया, तो चाय और बिस्किट हमारा पेट जरूर भर सकता है, लेकिन वो ये इंश्योर नहीं करेगा कि हमें पोषण मिला. तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पोषण के लिए हमें बैलेंस्ड फूड लेना होगा, और बैलेंस्ड में हमें ध्यान रखना होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लें, कुछ फैट भी हो, कुछ उसमें प्रोटीन भी हो, कुछ फाइबर्स भी हो, और वो ये अलग अलग जो भोजन के ग्रुप्स हैं उसको लेकर कर सकते हैं. एक और भ्रांति ये रहती है कि जितना महंगा फल हो या जितना महंगा खाना हो वो अच्छा है. तो हमें बैलेंस्ड मील में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोकली हमारे यहाँ अवेलेबल है उसको हम खाएं, उसको यूज करें, वो भी उतना ही पौष्टिक है.
1: बिल्कुल, सीजन के जो फल और सब्जियां हैं जो आपके आसपास उगती हैं उनको जरूर खाएं, उनको बिल्कुल मिस ना करें
0: जी,
1: ताकि आपके शरीर में पोषण बना रहे
0: जी.
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग महंगे खाने को ही पौष्टिक मानते हैं और सस्ते खाने को बोलते हैं कि इसमें क्या ही न्यूट्रिशन होगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने आसपास उगाई गई फल और सब्जियां खाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है पोषण आपको मिलता रहेगा. मैम, इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का संदेश आंगनवाड़ी से जुड़ा है, हम सब जानते हैं, इसमें परिवार और आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है?
0: तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हमें आंगनवाड़ी को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी या एक ऐसी जगह के रूप में नहीं देखना चाहिए जहां हमने अपने बच्चे को भेज दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई. हम किस तरह से समुदाय अपने आप को उससे इंगेज कर सके, इन्वॉल्व कर सके, और जिसे हम बोलते हैं कि जनभागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सके. ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ वित्तीय सहायता ही दें, आप जिस भी तरह से उसमें सहायता दे सकते हैं, जिस भी तरह से आप इंगेज हो सकते हैं, इंगेज हो. शुरुआत सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि हम बच्चों को समय पर आंगनवाड़ी भेजें.
1: बिल्कुल.
0: दूसरा कि वहाँ जो सिखाया जा रहा है वो जो वहाँ की सीख है उसको फॉलो किया जाए. तीसरा, अगर समुदाय या स्वयं सहायता समूह हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं और वहाँ पे आंगनवाड़ी में किसी तरह की ज़रूरत है, मान लीजिए बच्चों को क्योंकि खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, या बैठने के लिए या कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या वो समुदाय के साथ मिलकर कुछ इस तरह का जन सहयोग करके पैसे जोड़ कर और वो चीज़ वहाँ पर खरीद सकते हैं इनकी नहीं कर सकते. चौथा एक ये हो सकता है जो मैं आपको बता रही थी कि हम मॉनिटरिंग के मोड में ना जाके, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन, कि किस तरह से हम आपको और सहयोग कर सकते हैं, आप बताइए कि आपको क्या जरूरत है, हम और क्या कर सकते हैं. सकता है आंगनवाड़ी के आसपास में टॉयलेट उपलब्ध ना हो, तो क्या वहाँ के पंच सरपंच मिलके वो शौचालय बनाने में मदद कर सके। मान लीजिए शौचालय है लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है, तो क्या हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं, क्या हम पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ करा सकते हैं, क्या हम साफ सफाई का काम करा सकते हैं, कुछ नहीं तो क्या हम अच्छे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे मुरिंगा हो गया या अन्य इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जिससे कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो इस तरह से हम एक्टिवली इंगेज होंगे, जितना ज़्यादा हम इंगेज होंगे, हम सिर्फ दूर से दर्शक बन के ना देख के बल्कि उसको अपना समझें, मतलब उस आंगनवाड़ी केंद्र को हम अपना समझें, तो हम ज़्यादा बेहतर उसको सुधार ला पाएंगे और अल्टीमेटली ये सारा सुधार हमारे अपने बच्चों के लिए है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि दर्शक ना बना जाए और स्वयं आगे आए, एक कदम बढ़ाएं उनके साथ और सहयोग करने की हिम्मत करें, ताकि जहां देश का भविष्य बन रहा है अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दें, कह सकते हैं। मैम, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए, जैसे कि आपने बताया कि आप सामाजिक व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, तो सकारात्मक चीज़ें कैसे हम अपने व्यवहार में लाएं ताकि जो हमारा दृष्टिकोण है वो अच्छा रहे।
0: देखिए मैम, जैसे मैं एक वही जो आपको एक एग्जांपल दे रही थी बच्चों का, मैंने आपको बताया था, या मैंने गर्भवती स्त्रियों का बताया था, इनफैक्ट जब हम किशोरियों से भी बात करते हैं तो पता चलता है कि 12 बजे तक बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है सबसे पहला परिवर्तन जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें एक टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ भोजन के समय पे भी ध्यान देना होगा। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मुझे ये भी पता, उन्होंने ये भी बातचीत में शेयर किया कि दिन में वो चावल चपाती लेते हैं या कभी कभी सब्जी खाते हैं, और रात में सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खाते हैं। और ये मैं सिर्फ एक हाथ से बात करके नहीं बता रही, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग समय पे बात करी, तो मुझे लगता है हमें जो अपने लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है वो यही कि कैसे हम बैलेंस्ड मील, एक पूरी बैलेंस्ड थाली जो है उसको लाने की कोशिश करें। हाँ, इसमें लोग ज़रूर कह सकते हैं कि भाई हो सकता है हम बैलेंस्ड थाली अफोर्ड ना कर पाएँ, हम उसको यूज़ ना कर पाएँ, या समय का कहीं कहीं कमी हो, लेकिन इसमें हम फिर वही बात बोलेंगे कि जो महंगा है वही अच्छा है, इस चीज़ को हमें नहीं फॉलो करना होगा। एक बैलेंस्ड थाली को हम अपने जीवन में लाएं, नियमित हम अपनी नियमित दिनचर्या में वॉक करें या इस तरह की शारीरिक श्रम करें, और अगर हम बच्चों की बात करें तो जो नियमित टीकाकरण है उनको हम समय समय पर टीकाकरण को लगाएं, और बच्चे जो अनीमिया की हम बात करते हैं कि वो भी बहुत ज़रूरी है, जो भी हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आयरन की दवाई मिल रही है, वो सब हम समय समय पे खाएं, तो हम ओवरऑल अपने हेल्थ को बेहतर रख पाएं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है उनको हम अच्छे से कंज्यूम करें, एटलीस्ट जैसे आयरन की गोलियां हैं, फॉलिक एसिड है, ये सब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मिल रही सरकार की तरफ से, तो हमें उसको सही समय पर खाने की, जैसे कि आपने संतुलित आहार, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या है, ज़्यादातर लोगों को संतुलित आहार सबको पता होता है, लेकिन तब भी अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि संतुलित आहार की थाली कैसी दिखती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो आहार जो है वो उसमें न्यूट्रिशन जरूर होना चाहिए, फोकस करना चाहिए, साथ ही संतुलित आहार के साथ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैम, समय भी बहुत जरूरी होता है, समय पर सही आप भोजन कर रहे हैं तो वो पौष्टिकता में बहुत जरूरी होता है। मैम, युवा किस तरीके से शामिल हो सकते हैं अपने आंगनबाड़ी को बेहतर बनाने में?
0: जी दीपा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए युवा हमारे लिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में युवाओं की बहुत अच्छी जनसंख्या है, मतलब सबसे अच्छी,
1: और युवाओं का देश है
0: बिल्कुल, और अगर हम ये हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं, अगर हम इनकी मदद लेते हैं, इनका सपोर्ट लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क ला सकते हैं। देखिए हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके लिए एक सहायिका रहती है, जो कि जिनकी जिम्मेदारी होती है उस पूरे एरिया को कवर करना, लेकिन यदि यहीं पे वो एक टोली बनाते हैं और टोली बना के युवाओं की टोली बनाते हैं, या युवा जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर इस तरह के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करें, मान लीजिए कि वो चित्र कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करें, नुक्कड़ नाटक करें, ऐसी जगहों में जाएं जहाँ पे कि इस तरह की जागरूकता का अभाव है, वहाँ जाके वहाँ की बोली में, मान लीजिए अगर हम बुंदेलखंड में हैं तो बुंदेलखंडी में अगर हम वहाँ जाके एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक करते हैं किसी गांव में, तो वो ज़्यादा अपील करेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर लोग इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि पोषण सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़, खाने के बारे में नहीं हुआ, वो पूरी हैबिट्स के बारे में हुआ। तो अगर हम बोलते हैं कि खाना खाने हमें किसी भी व्यक्ति को छह बार हाथ धोना चाहिए, तो वो छह बार हाथ धोना कब कब है, हाथ कैसे धोना चाहिए, अगर ये बेसिक जानकारी भी हम अपने युवाओं को या बच्चों को देते हैं और वो बच्चे घर जाके, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा पांच बच्चों को बताता है या अपने परिवार को जाके बताता है, तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी जानकारी दे पाएंगे, और जानकारी देने के साथ साथ जब बच्चे वो खुद से करते हैं तो वो व्यवहार में ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे कि उनका व्यवहार परिवर्तित हो। तो इस तरह से हम युवाओं की सपोर्ट ले सकते हैं, उनको अलग अलग गतिविधियों में इंगेज कर सकते हैं। और सभी, मैंने अभी तक का मेरा अनुभव ये ज़रूर कहता है कि जो युवा होते हैं या जो किशोर किशोरियां होते हैं, आप उनको जब इंगेज करते हैं तो वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इस सब में हिस्सा लेने में, और उनका बहुत सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में।
1: जी ज़रूर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भारत युवाओं का देश है, युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं वहाँ आप अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं, जो आपके आसपास के भाई बहन हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पोषण की महत्ता क्या है इसको बता सकते हैं, बच्चे जो छोटी छोटी अपना स्वास्थ्य रखने वाली हैबिट्स है उनको, उनके प्रति जागरूकता ला सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी, चूँकि नौवा राष्ट्रीय पोषण माह पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो गर्भधात्री और गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो मैं गर्भवती महिलाओं के लिए ही बोलूँगी कि गर्भवती महिलाओं का, जैसे ही गर्भ का पता चलता है, महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आंगनवाड़ी में जो हमारी 3 या 4 ANC जाँच होती है, उन जाँचों को समय समय पर कराना चाहिए। उसके अलावा जो आयरन की हमें दवाई मिलती है वो खाना चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड जो थाली है, जो हमारी एक पोषण के लिए हमें जो इंश्योर करना है कि उसमें फल, सब्जियां, रोटी, दाल, चावल और इस तरह की चीज़ों को, दूध, दही, इसको उपयोग में ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है एक कैचवर्ड जो होता है वो यही है कि आप कितना ध्यान रख रही हैं, कितनी जागरूकता के साथ ध्यान रख रही हैं, सिर्फ टाल नहीं रहे, थोड़ा सा समय लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन महिला अपना और अपने परिवार दोनों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है, अपने प्रति थोड़ा सा सेल्फिश होकर।
1: जी जी जी बिल्कुल। मोनिका जी, आप यहाँ पर आई, हमने 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में डिस्कशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मुझे इतना समय देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
1: और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।